अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। रिमन, भक्ति से असीम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर हम धन्य हो जाते हैं, जिससे दुख चिंता अवसाद और सभी समस्याओं से दूर एक अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है।

आप सुन रहे थे साधना सरगम और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। वंदना कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कवल सिद्धू के स्वर में ये शपथ।

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत बद्ध पाठ। कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम में दिन में 11 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर अनुगुंज और रात्रि 10 बजे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा रिले किए जाएंगे। सवेरे 8:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। रात्रि 8 बजे काव्यांजलि के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमती माधुरी नैथानी से उनका काव्य पाठ। दिन में 3:02 पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सुनिएगा डॉक्टर पंकज गर्ग से संकल्प मिश्रा की बातचीत। विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले रोग, कारण, लक्षण और उपचार। दोपहर 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंडल, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों के मुख से रचनाएं, बाल गीत और बाल कहानी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर आज का आकर्षण रहेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज क्रम रहेगा श्रोताओं के अनुरोध माँ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा सफल कृषक श्री ओमबीर सिंह से विकास चमोली की बातचीत। विषय रहेगा कृषि और बागवानी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलाम साबिर का सारंगी वादन। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा परमेश्वरी रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर आप सुन सकते हैं सामुदायिक गान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सोमेश कुमार की गायी गजलें प्रसारित की जाएंगी रात्रि 8:15 पर। सवेरे 9 बजे सुनिए का कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, जिसमें आज की थीम रहेगी नशा मुक्ति जागरूकता में रेडियो की भूमिका। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। दिन में 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:15 पर शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है, अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये थे हेमंत कुमार, फिल्म का नाम था कोहरा। गीत था कैफी आजमी का और संगीत हेमंत कुमार का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत। आवाज है शमशाद बेगम की और फिल्म का नाम है आन।

बोले बिसरे गीत कार्यक्रम का यह है अंतिम गीत। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी।

0: अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू और मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री धामी ने देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्व विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, इसमें डिजिटल लर्निंग है, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे अनेक पाठ्यक्रमों को हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क AIR न्यूज

0: वेबसाइट और न्यूज ऑन एआई मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ भी केंद्रित होना चाहिए। सरकार झीलों की नगरी नैनीताल को संवारने और सजाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में भीमताल, नौकुचियाताल तथा कलमताल के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। झील विकास परियोजनाओं पर 46 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कल झीलों के निरीक्षण के साथ ही अन्य विकास कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सचिव आवास ने बताया कि नौकुचियाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ से अधिक की धनराशि में बोटिंग स्टैंड, प्रतीक्षालय टिकट काउंटर, पार्किंग सुविधा, फ्लोटिंग जेटी, 2089 मीटर लंबा पैदल मार्ग, गजीबो निर्माण, प्यू पॉइंट लैंडस्केपिंग और सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही भीमताल, कमलताल झीलों को भी सुंदर, आकर्षक बनाया जाएगा।
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले के नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित ये प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में आज आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के मसूरी आगमन को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पास आउट अधिकारियों में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 एमबीबीएस डॉक्टर, 31 बीटेक इंजीनियर, एमडी, एमटेक और अन्य उत्शिक्षित युवा भी शामिल हैं। इस अवसर पर पवन कुमार मीणा को गृहमंत्री सॉर्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट ऑलराउंडर ट्रेनी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं सचिन को बेस्ट आउटडोर ट्रेनी और कांते मिश्रा को बेस्ट इंडोर ट्रेनी चुना गया है। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वो आवश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक ना करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न तेल कंपनियों के कुल 167 पेट्रोल डीजल पंप संचालित हैं और सभी पंपों पर पेट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम सहित स्नातक, यूजी स्तरीय सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण व प्रवेश के लिए ₹50 निर्धारित शुल्क जमा कर 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारियां समर्थ पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल जिले में स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वार्षिक खेल दिवस 2026 का भव्य आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कैडेट्स ने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों के साथ भी विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में बजेंद्री हाउस ने सर्वश्रेष्ठ ड्रिल प्रतियोगिता का खिताब जीता, जबकि जिम्नास्टिक टीम को सर्वश्रेष्ठ इवेंट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। केसरी हाउस ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। CUET में गड़बड़ी की खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण लिखता है, अब CUET UG में भी गड़बड़ी। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, UET UG एक और बाधित परीक्षा, NTA दोबारा नाकाम, विद्यार्थी परेशान। गढ़वाल मंडल में वाहन दुर्घटनाओं के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, गढ़वाल में हादसों में 10 लोगों की मौत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड दौरे की खबरों को भी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, धामी के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार, नवीन। मौसम में बदलाव की खबरों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, एक घंटे की बारिश से शहर पानी से लबालब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू। और मसूरी स्थित ITBP अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए परमेश्वरी रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर आयुष सेमवाल, तबले पर आयुष, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राजन। तो आइए सुनते हैं परमेश्वरी रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए आपको सुनवाती हैं परमेश्वरी रावत का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: परमेश्वरी रावत के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर आयुष सेमवाल, तबला पर आयुष, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राजन। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम में दिन में 11 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, दिन में 11 बजे। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम अनुगुंज, रात्रि 10 बजे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
7: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
4: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो

0: सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीब

0: बी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pehelgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Keerti Vardhan Singh received him at the airport.

आज की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का स्वागत और नमस्कार कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं, जीवन को स्वस्थ और खुशनुमा बनाने में बहुत हद तक हमारी अच्छी आदतें भी शामिल होती हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं, वरना इन आदतों के कारण जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जी, हम बात कर रहे हैं तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थों के सेवन की, जिनके सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के आदि के कैंसर हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है और इसके सेवन से उच्च रक्तचाप जैसी समस्या भी हो सकती है। तंबाकू और इसके बने पदार्थों के सेवन से दांत और मसूड़ों को नुकसान होता है, जिससे अच्छे भले चमकते दांत कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं और उससे खाना पीना भी दुर्बल हो सकता है। श्रोताओं, इन पदार्थों के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और एक बार ये लत लग जाती है तो वो आगे बढ़ती चली जाती है, तो अच्छी बात नहीं है। श्रोताओं, तंबाकू और इनके बने पदार्थों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इनकी जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू के उपयोग से जुड़े खतरों को उजागर करना। शोधन, देश में प्रति वर्ष इनके सेवन से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो क्यों ने आज इन पदार्थों का हम सेवन अगर करते हैं तो बंद कर दें, और इस आदत को छोड़ना चाहें तो मन में ठान ले तो छोड़ भी सकते हैं। इसलिए खुशहाल जीवन के लिए इन पदार्थों को ना और जीवन को हाँ कहें।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।

0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी
1: कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आप सभी का स्वागत है। और आइए श्रोताओं, देश दुनिया की जानकारी लेते हैं अखबार के पन्नों से। अग्निपथ पर तपे सेना का हिस्सा बने 1170 अग्निवीर। दिल्ली में संदिग्ध आतंकियों गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। कूड़ा फेंकने वालों का मौके पर होगा चालान। इको वॉरियर श्रेणी में डॉ हिमानी पुरोहित को किया गया सम्मानित। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल जरूरी। खेल मंत्री ने सचिवालय संकल्प की बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। छात्रों को मिलेगा पॉलिटेक्निक में सीधा प्रवेश। तंबाकू का शौक जिंदगी भर का अभिशाप। उत्तराखंड का हर पांचवा किशोर तंबाकू की गिरफ्त में। चालक भर्ती परीक्षा आज 19 केंद्रों पर 8,424 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बद्रीनाथ हाईवे पर किसी तरह का जाम नहीं। सुव्यवस्थित गेट सिस्टम के तहत हो रही यात्रा। वीकेंड पर पर्यटकों से पैक हुई मसूरी। दिन भर जाम में फंसे रहे लोग। पेड़ गिरने से वंदे भारत समेत कई ट्रेनें हुई लेट। देहरादून में बारिश का 86 साल का नया रिकॉर्ड बना। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चबोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन, आकाशीय बिजली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं और वर्षा की तीव्र से अति तीव्र दौर पड़ने की चेतावनी दी गई है। मैदानी जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। जी हां श्रोताओं, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। बिल्कुल आपसे कहेंगे कि बदलते मौसम में अपना ध्यान रखें और अगर यात्रा पर हैं तो बिल्कुल अपने लिए सुरक्षित यात्रा के लिए मौसम संबंधी अपडेट से जानकारी लेते रहें। और आइए अब डालते हैं एक नजर इतिहास के पन्नों पर कि 31 मई क्यों है खास आज इतिहास के पन्नों में। सन 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। सन 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना। वर्ष 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। और आज के दिन वर्ष 2006 में अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जनरल मिशेल हेडन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया। और वर्ष 2010 में भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया। श्रोताओं, ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी। और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 गीगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोतों, कार्यक्रम में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म निर्माता और निर्देशक और पट कथाकार की, जिन्होंने फिल्म निर्माण के लिए एक नई विचारधारा शुरू की थी और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने फिल्में भी बनाई थी। जी, हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक और पट कथाकार राज खोसला जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 31 मई 1925 को हुआ था। सन 1950 से लेकर 80 के दशक में हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माता, निर्देशक और पटक कथाकार राज खोसला को बचपन से ही गीत संगीत की ओर रुझान था। वो पार्श्व गायक बनना चाहते थे, लेकिन आकाशवाणी में बतौर उद्घोषक और पार्श्व गायक काम करने के बाद 19 वर्ष में अपने पिता के साथ पार्श्व गायक की तमन्ना लिए मुंबई चले आए। और इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अंजुमन इस्लामिक स्कूल से प्राप्त की और साथ ही अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। इनके चाचा अभिनेता देवानंद के पिता किशोरी आनंद के गहरे दोस्त थे और मुंबई में इनकी मुलाकात हुई अभिनेता देवानंद से हुई और उन्होंने गुरुदत्त के सहयोग से 1954 में फिल्म बनाई थी बिलाप, जो देवानंद और गीता बाली को लेकर बनाई गई थी। और ये बॉक्स ऑफिस पर चल तो नहीं पाई, लेकिन ये निराश नहीं हुई बल्कि दुगने उत्साह से 1956 में फिल्म CID बनाई। ये फिल्म बेहद ही लोकप्रिय रही थी और ऐसा माना जाता है कि सस्पेंस फिल्मों की शुरुआत के बाद फिल्म राज खोसला ने वर्ष 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो बनाई थी वो

कौन थी। जी हाँ, और ऐसा माना जा रहा है कि डायरेक्टर राज खोसला ने अपने समय में काफ़ी आगे की फिल्में बनाई हैं, और इस फिल्म में राज खोसला ने कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को मौका दिया है, और इनकी बनाई महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं काला पानी, सोलवा साल, बम्बई का बाबू, अनीता, चिराग, कच्चे धागे, माटी मांगे खून, दो प्रेमी, प्रेम कहानी और दोस्ताना आदि। परिषदों बेहतरीन शानदार फिल्मों को देने के बाद 9 जून 1991 को राज खोसला ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर फिल्में इनकी आज भी हमें इनकी याद दिलाती हैं। सुनते हैं इनके द्वारा निर्मित फिल्म से कार्यक्रम में ये गीत, फिल्म का नाम मेरा साया।

श्रोताओं, हम आज याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले संगीतकार अनिल बिश्वास को, जिनका जन्म 7 जुलाई 1914 को पूर्वी बंगाल में हुआ था। आप स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तो हिंदी सिनेमा के गीत संगीत के स्वर्ण युग के साथ ही रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि अनेक गायक और गायिकाओं को तराश कर हीरे जवाहरात की तरह पेश किया। श्रोतों, अनिल बिश्वास ने सर्वप्रथम मुंबई आकर फिल्म धर्म की देवी नाम की फिल्म में संगीत दिया। उसके बाद ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा। हिंदी फिल्म सिनेमा में पहली बार आर्केस्ट्रा के इस्तेमाल का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आपने आकाशवाणी के लिए अपनी सेवाएं दी तो साथ ही हम होंगे कामयाब जैसा गीत भी संगीतबद्ध किया और इस गीत को शब्द दिए थे गिरिजा माथुर ने। श्रोताओं, अनिल बिश्वास को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया गया तो सन 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही अनिल बिश्वास ने अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हिंदी सिनेमा जगत के लिए पितामह कहे जाने वाले अनिल बिश्वास की सबसे बड़ी खासियत रही कि उन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण के कारण जब अनेक संगीतकार प्रतिस्पर्धा में थे तो एक कमल की भांति ये खड़े रहे और सबका मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन श्रोताओं, आज ही के दिन 31 मई 2003 को संगीतकार अनिल बिश्वास ने हमेशा हमेशा के लिए संगीत जगत को अलविदा कह दिया, पर इनकी संगीत लहरियां आज भी अमर है और याद दिलाते हैं संगीत बिश्वास की संगीत को। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अनिल बिश्वास का संगीत बद किया कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। कल आपको फिर एक नए साथी के साथ होगी नमस्कार देहरादून में मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

यथ सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर हम हर सप्ताह प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, जिसमें हर सप्ताह होती है एक नई थीम। जी हाँ, एक नई थीम के साथ हम आपसे जुड़ते हैं और साथ में आप उस थीम से संबंधित अपने विचार हमें प्रेषित करते हैं और उन विचारों को कार्यक्रम में शामिल भी किया जाता है। चलिए आज की थीम की बात करते हैं। श्रोताओं, तंबाकू को ना जीवन को कहे हाँ, नशा नाश का कारण है। धूम्रपान के धुएं से जीवन को धुआना बनाए, इस तरह के अनेक स्लोगन, विचार और बातें रेडियो पर प्रसारित की जाती रहती है, ताकि आप तंबाकू और तंबाकू से जुड़े पदार्थों का सेवन ना करें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए। शुद्धम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष इन बातों को ध्यान में रखकर 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे देश में लाखों लोग तंबाकू और तंबाकू के पदार्थों के सेवन से उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे डॉक्टर विशेषज्ञों के अनुसार इन पदार्थों के सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर आदि हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने की इस वर्ष की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। श्रोताओं, नशा करना एक अच्छी आदत नहीं है, इसलिए इससे हमेशा दूर रहे। नशा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए सुखद जीवन के लिए अच्छी बातों को अपनाएं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति जागरूकता के बारे में। तो लिख भेजे अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088007311 पर। आज की थीम नशा मुक्ति जागरूकता में रेडियो की भूमिका। व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः दोहरा दें, 7088007311 पर लिख भेजे अपने विचार और आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तब तक लेते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमें मैसेज लिख रहे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज हमें लिख भेजा है गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणवीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम और वीरेन। आप सभी लिखते हैं कि विचार आपके गीत हमारे कार्यक्रम हमें अच्छा लगता है और साथ ही आप लिखते हैं कि आज की थीम से संबंधित मैं यही कहना चाहेंगी कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि नशे से दूर रहें और ये हमारे जीवन को ख़त्म कर लेता है। धन्यवाद जी, बिल्कुल आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा है आपका विचार। और नशे के दूर को करने के लिए यानी कि नशे से आप दूर रहें, इस तरह की बहुत सारी बातें आकाशवाणी से प्रसारित की जाती है ताकि हमारे श्रोता जागरूक बने। और कार्यक्रम में अगला मैसेज लें, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे और आज की थीम है नशा मुक्ति जागरूकता में रेडियो की भूमिका। कार्यक्रम में मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप वीके सिंह सीनियर सिटीजन डिफेंस कॉलोनी देहरादून से लिखते हैं कि धूम्रपान को छोड़ना बहुत मुश्किल है। विविध भारती इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, रेडियो के द्वारा ऐसे अनेक प्रयास किए जाते हैं ताकि तंबाकू और तंबाकू से जुड़े पदार्थों का सेवन हमारे श्रोता न करें। और श्रोता, हम तो ये कहना चाहेंगे कि तंबाकू और तंबाकू से जुड़े जो पदार्थ हैं वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सेवन करने के लिए जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम सेवन कर सकते हैं और जीवन को खुशी खुशी बिताया जा सकता है। और कहते हैं ना कि मुश्किल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, ज़रूरत है बस आपकी पहल की और आपकी दृढ़ निश्चय की। और धन्यवाद हम आपको देंगे वीके सिंह जी आपके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिखते हैं, आप ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली और खूबचंद वर्मा। आप लिखते हैं कि आज की थीम बहुत अच्छी है, नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि नशा नाश का कारण है, नाश की जड़ है। हम हमेशा सभी लोगों को बोलते हैं कि जीवन बहुत कीमती है, जीवन जीने के लिए है, न कि नशा करने के लिए। नशे की आड़ में बहुत से परिवार उजड़ गए हैं। बड़े बुजुर्गों की बात को रेडियो में दी जाने वाली जानकारी का पालन करना चाहिए, नशे से हमेशा दूर रहें। क्या बात है बलकरण वर्मा जी, आपके सुंदर से विचार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। आप लिखते हैं कि विचार, आपके गीत हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई। और लिखते हैं कि जैसा कि सर्वविदित है आज 31 मई को हम मना रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस, और आपने आज के दिन को जो विषय रखा है नशा मुक्ति और जागरूकता में रेडियो की भूमिका विषय पर, तो इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी से हम काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और आज भी बड़े जोश और जुनून से आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। अब नशा मुक्ति और जागरूकता में रेडियो की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। कहते हैं कि नशा नाश की जड़ है, इस पर आकाशवाणी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके श्रोताओं को जागरूक किया है। अनेक तरह के रूपक, नाटक, विज्ञापन और फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी ने श्रोताओं के साथ जुड़कर इस विषय पर नशा मुक्ति अभियान के तहत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और लोग जागरूक भी हुए हैं, उन्हें जागरूकता आई है। इनमें आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। समय समय पर चिकित्सा अधिकारियों से विशेष प्रोग्राम आकाशवाणी ने किए हैं। श्रोताओं की जो नशा मुक्ति पर प्रश्न है उनका जवाब भी आकाशवाणी ने बिल्कुल सटीक तरह से दिया है। पहले तो आकाशवाणी रेडियो का एक सीमित क्षेत्र होता था, पर अब तो डिजिटल युग में मोबाइल ऐप के द्वारा आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों को विश्व में किसी भी कोने में बैठकर स्पष्ट और स्वच्छ तरीके से सुना जा सकता है। आकाशवाणी हमेशा श्रोताओं को जागरूक करती रही है, श्रोता लाभान्वित भी होते रहे हैं। जहां जहां भी नशा मुक्ति शिविर लगाए जाते हैं उनके बारे में बेहतरीन जानकारी दी जाती है आकाशवाणी के द्वारा। कुल मिलाकर आकाशवाणी का सराहनीय प्रयास है श्रोताओं को जागरूक करना, उनको लाभान्वित करना, क्योंकि आकाशवाणी का तो नारा भी यही है, बहुजनिताय बहुजन सुखाय। क्या बात है धर्मेंद्र चिपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर से और विचार विस्तार से जो आपने लिख भेजे हैं आज की थीम को लेकर। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर कांति निकेतन से, कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि और इनके परिवारजन। आप लिखते हैं कि आज तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। हमें तंबाकू से बने खाने वाले या धूम्रपान करने वाली चीजों से हमेशा बचना चाहिए, ये सभी हेल्थ और वेल्थ दोनों को नुकसानदायक है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और साथ ही धन्यवाद देंगे सुंदर से विचार के लिए।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: समय 9:30 और 27 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बेचारा आपके गीत, हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, निजामाबाद तेलंगाना से MA वैद्य रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुरेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद बुकरम और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। लिखते हैं आप, नशा इंसान की जिंदगी को नाश करता ही है, साथ ही पूरे घर को बर्बाद कर देता है, इसलिए हमेशा इससे दूर रहना चाहिए और जिंदगी में हमेशा हमें नशे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और लिखते हैं कि बहुत ही बेकार आदत है, इसलिए इससे हमेशा बच कर रहें और जितना हो सके इससे दूर रहें, क्योंकि ये अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देता है। आप एक शेर लिखते हैं, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है जब गिरने वालों को थाम ले। धन्यवाद हमारे MA वैद्य रुमानी जी आपके सुंदर से विचार के लिए। साथ ही मैसेज जो हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद बसरू, शाहिन हसन अक्सा, नाजिया आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोग तंबाकू, गुटखे या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, इनके सेवन से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और इसलिए आज की पीढ़ी इनको शौक समझकर इस्तेमाल कर रही है जो नुकसानदायक है। और लिखते हैं कि आप सभी से अनुरोध है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। क्या बात है सैयद मसरूर जी, आपके सुंदर से विचार के लिए आपको धन्यवाद। और कार्यक्रम में अगला विचार ले, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल संगीता रानी और साथ में इनका पूरा खुश दिल परिवार। आप लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम की थीम आपने अच्छी रखी है और साथ ही लिखते हैं कि नशे का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि तंबाकू, शराब और इस तरह के नशे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। नशे से बचने के लिए हमेशा हमें फल फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। और लिखते हैं कि आजकल गर्मियों के दिनों में हमें पक्षियों के लिए दाना पानी और पानी के बर्तन रोटी के टुकड़े रखने चाहिए। और लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए आपको फूलों के साथ हम धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद सुंदर से विचार के लिए। और निश्चित ही आप हमारे हमेशा प्रोग्राम से जुड़ते हैं और विचार प्रेषित करते हैं। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, आपने विस्तार से लिखा है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रममा मेसेज हामीले भेजा है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफल साहिब सईद भाई नगमा नाज मंसूरी और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी लिखते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षक हमारा रेडियो है। रेडियो से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। 90 सालों से रेडियो अपनी सेवाएं देता आ रहा है और रेडियो के माध्यम से बहुत ही हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। रेडियो के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी होता है। और लिखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो जानकारी होती है, साथ ही उससे स्वास्थ्य के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी प्रदान की जाती है रेडियो के माध्यम से। इसलिए रेडियो की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद महमूद खरामपुर से भाई रफत साहब और आपके परिवारजन इसके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आपने मैसेज हमें लिखा है, ये श्रोता है गांव दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी रीति कौर, साथ में बलबीर सिंह। लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी प्रसारित की जाती है और लिखते हैं कि तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज ले उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप नेहा चौहान नेहटूर धामपुर यूपी से। आप लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नेहा जी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप थीम से संबंधित अपने विचार हमें प्रेषित करती तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन आपका हमें मैसेज मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है देहरादून चक्राता रूढ़ी ईदगाह मोहल्ला से ही सुनील चावला, मीना साक्षी चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी और साथ पीन के परिवारजन। लिखते हैं कि हर रविवार को सुनते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, रेडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है। और लिखते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आपको भी बधाइयाँ। और लिखते हैं कि आज की थीम से संबंधित हम यही कहना चाहेंगे कि नशे की लत बहुत ही बेकार है, इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए और साथ ही दूसरों को भी इससे दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। धन्यवाद श्रोताओं आपके सुंदर सी विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं रुड़की उत्तराखंड से मोहन, पूजा, राधे, छवि, अर्जित बाबू। लिखते हैं कि नशा हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारे साथ रहने वालों को भी जिंदगी को खराब करता है, इसलिए नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए, सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक होता है नशा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी और आपके परिवारजन आपके सुंदर से विचार के लिए।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज है हमारे श्रोता लिखते हैं येलांदुकाठु गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना चिन्नापा से सुनीता राज भानुराज खन्ना अमित खन्ना और अम्मी लिखते हैं कि रेडियो हमारा अच्छा सा दोस्त है। रेडियो के माध्यम से हम रोज नई जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारा ज्ञान होता है, मनोरंजन होता है, साथ ही सेहत के साथ साथ देश विदेश की जानकारी भी प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश खन्ना जी आपके इस विचार के लिए। साथ ही मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं शांति निवास लहेगांव रेलवे से कुमारी कल्पना कुरहाड़ी वंदना आशीष कुरहाड़ी और दीपक कुरहाड़ी लिखते हैं कि आज का टॉपिक है नशा मुक्ति जागरूकता में रेडियो की भूमिका। टॉपिक अच्छा है, रेडियो मनोरंजन के साथ साथ हर क्षेत्र की जानकारी देता है, चाहे स्वास्थ्य की, खेती की, शिक्षा की जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से ही मिलती है। अगर बात करें नशे की तो लिखते हैं कि नशा सबसे खराब है और लिखते हैं कि शराब को हम आज देख रहे हैं कि एकदम कम उम्र के युवा इसका सेवन कर रहे हैं, इससे मौत को गले लगा रहे हैं और साथ ही रेडियो ने हमेशा हमें नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। समय समय पर रेडियो ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देकर अपनी भूमिका निभाई है और आगे भी देता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद आपके सुंदर से विचार के लिए। और साथ ही कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं सगीता नौटियाल तलाई एम के शेरपौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, लिखती हैं कि हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, और लिखते हैं कि आज की थीम से संबंधित हम यही कहना चाहेंगे कि नशा मौत का कुआ है जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता। क्या बात है संगीता जी, बहुत आपने सुंदर, अच्छा और छोटे से शब्दों में बयां किए अपने विचार। निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है कि नशा ऐसा मौत का कुआ जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता और इसलिए जो नशे को छोड़ देता है या नशे से दूर रहता है वो अपने अपने जीवन को संवार सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। धन्यवाद आपके सुंदर से विचार के लिए।

चलते चलते कार्यक्रम में लेते हैं मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। यहाँ पे मोहल्ला बारादरी महमूद खरामपुर से भाई रफल साहब लिखते हैं कि बिल्कुल हमें आज से ही संकल्प लेना चाहिए कि नशे से हम दूर रहें, क्योंकि घर पर भी हमारा इंतजार कोई कर रहा होता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपकी इस मैसेज के लिए। और निश्चित ही हमें भी संकल्प लेना है कि तंबाकू और तंबाकू से जुड़े पदार्थों का हम सेवन नहीं करेंगे। श्रोतों, बहुत सी बार देखा देखी या कुछ अच्छा करने की चाह में हम कई तरह की नशीले पदार्थों से जुड़ जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी इनका सेवन करें तो ध्यान रखें उस पर लिखी हुई चेतावनी को भी पढ़ें और उसको देखें कि किस तरह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: एफएम 100.5 चेरी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कल 1 जून को जेई एडवांस 2026 के परिणाम जारी करेगा। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वो आवश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक न करें। सरकार झीलों की नगरी नैनीताल को संवारने और सजाने की ओर तेजी से कार्य कर रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम सहित स्नातक यूजी स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वार्षिक खेल दिवस 2026 का उत्साह और उमंग के साथ भव्य आयोजन किया गया। मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। और उत्तराखंड में बच्चों की अवरुद्ध वृद्धि दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 चेरी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। आइए आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है,
तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांटकर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं, ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये संगीत है नदीम शर्वन का, गीत है समीर का, आवाज़ें हैं सोनू निगम और साथियों की फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

अलका याग्निक की आवाज में गीत था, फिल्म का नाम था साजन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है संघर्ष। गीतकार समीर और संगीतकार जतिन ललित।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

0: चमोली जिले की नीति घाटी में आज से दो दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित ये प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में आज आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के मसूरी आगमन को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पास आउट अधिकारियों में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 MBBS डॉक्टर, 31 BTech इंजीनियर, MD MTech और अन्य उच्च शिक्षित युवा भी शामिल हैं। इस अवसर पर पवन कुमार मीणा को गृहमंत्री स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट ऑलराउंडर ट्रेनी सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं सचिन को बेस्ट आउटडोर ट्रेनी और कौंते मिश्रा को बेस्ट इंडोर ट्रेनी चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग ने दो महत्वपूर्ण समझौता अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड काशीपुर व प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ हुए समझौते के तहत सरकार प्रदेश के नौनिहालों को तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ विद्यालयों में शैक्षिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उसे कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़ना है, ताकि विद्यार्थी स्कूली स्तर से ही अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान रुड़की 1 जून यानी कल JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र परिणाम घोषित होने के बाद संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर कोड और ऑल इंडिया रैंक देख सकेंगे। इससे पहले इंस्टीट्यूट ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर छात्रों से आपत्तियां मांगी थी। प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पेंचक सिलाट खेल अब पूरे राज्य से खिलाड़ी उभरकर सामने आ रहे हैं और पिछले एक साल में प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने पेंचक सिलाट खेल में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतकर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देहरादून आमवाला में स्थित मल्टीपर्पज हॉल में 7वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में रेखा आर्या ने कहा कि पेंचक सिलाट जैसा खेल अनुशासन, परिश्रम और आत्मरक्षा का आत्मविश्वास देता है। अब युवा न सिर्फ इस खेल में करियर बना सकते हैं, साथ ही ये उनके लिए अपने आप को फिट रखने का भी शानदार जरिया है। राजधानी देहरादून में आज से ही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुई हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई की

0: शक्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:55 होने को है। अब थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिली होगा।
1: हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के

0: आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं

0: तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
3: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहां अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
3: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है।

0: मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल

जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो,

में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा

0: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: जी आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात शत मीटर मित धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानांकनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्यां एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धे समधिगतास्ति। भवद् युगलमपि विशेष प्रदर्शनम् अकरोत्। वयं संगीते तु युगल प्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेपि अधुना युगल प्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमं एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयम् अभिजानीयुः। अनिमेषः नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रिय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहं अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव क्रीडवा इति तौ

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। केदारनाथ यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रच दिया है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर है। दोनों पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक ना करें। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की कल 1 जून को जेई एडवांस 2026 के परीक्षा परिणाम जारी करेगा। सरकार झीलों की नगरी नैनीताल को संवारने और सजाने की और तेजी से कार्य कर रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम सहित स्नातक यूजी स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वार्षिक खेल दिवस 2026 का भव्य आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। और उत्तराखंड में बच्चों की अवरुद्ध वृद्धि दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:12 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आसामी भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
4: आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
5: जी हाँ।
4: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
5: माती रे।
4: ए माती रे मोरो मोते,
5: मोरो मोते।
4: माती के,
5: माती के।
4: सुमीलो,
5: सुमीलो।
4: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
5: ए
4: এই মাটিতে জীবন এই মাটিতে জ নি বলনা ইসকো জ বলনা ইয়ে এই মাটিতে জীবন সোবি জীবন জি কাছে জ কে নিচে বিন্দি লগা লেনা হ্যা না তো জীবন সোবি আকি আকি দোবার আকি আকি আকি মোসিলো अब पहला अंतर आएगा इसके बाद दूर आकाहार ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ह की तरह से तो आकाश ये ह और ह के बीच में आकाखार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो दूर आकाहार रोहन कियोनु लागे लागे खागोर तोलीर खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह खागोर तोलीर खागोर मतलब समुद्र के तल में तो खागोर तोलीर मानिक कियो मानिक कियो नू मानिक कियो नू लागे लागे
5: लागे लागे
4: इसके आ गया है आहा आहा मातिर बुकुत मातिर बुकुत मौनोर मालोती बुटोलो मौनोर मालोती बुटोलो इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते फिर दूसरा अंतर है मोनोर
5: मोनोर
4: कोरोनी रे
5: कोरोनी रे
4: हुरोर खुरोर पापोरी रे
5: पापोरी रे
4: पापोरी रे आजी
5: आजी
4: इतना हो गया ना
5: जी हां
4: आगे हुकुमार
5: हुकुमार
4: थापो
5: थापो
4: नाहुजुवा हुकुमार थापो नाहु जुवा आगे लिखा है ना
5: जी
4: खुंदोर
5: खुंदोर
4: खुदीनोर
5: खुदीनोर
4: खुदीनोर नहीं ख नहीं ख खुदीनोर
5: खुदीनोर
4: नौतून दृष्टि
5: दृष्टि
4: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
5: दृष्टि
4: दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
5: दृष्टि
4: कौनो
5: कौनो
4: ना हुआ
5: ना
4: हुआ
5: आगे
4: ना अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

0: और धीरे धीरे आवाज हल्की करते चले आना। एक बार तो
1: ए मातेरे मोरो मोते,
0: दूसरा हल्का बोल
1: मातेरे मोरो मोते,
0: इसमें और हल्का आप शुरू से लेंगे सारा गाना, है ना। एक दो तीन चार।

0: अभी आप सुन रहे थे आसामी भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अपराह्न के 12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बालमंडल।
1: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ, ये भी।
2: बच्चों संडे को बालमंडल में जरूर आना।

जय हिंद प्यारे बच्चों, बाल मंडल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी सुमन दीदी। बच्चों कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का खूब आनंद ले रहे होंगे, है ना बच्चों? और आप में से कुछ बच्चों ने तो समर कैंप भी ज्वाइन किया होगा, या हो सकता है कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ वॉटर पार्क घूमने जाने का प्लान कर रहे होंगे, है ना? बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। घूमिए फिरिए और खूब सारा पानी पीते रहिए। चलिए बच्चों कार्यक्रम में अब आपको बताते हैं कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। आज है 31 मई और हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 1987 में की गई थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। बच्चों तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। बच्चों नशा कैसा भी हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए बच्चों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मगर पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों की सुरक्षा हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, मगर आजकल के समय में तो और भी जरूरी है कि बच्चों को सही और गलत स्पर्श की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। बच्चों, आपके परिवार के सदस्य, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं, वो जब भी आपको प्यार से गले लगाते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं या फिर प्यार से आपके गाल सहलाते हैं, तो आपको उनके स्पर्श से, उनके टच से खुशी मिलती है और आप सुरक्षित महसूस करते हैं। पर अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको छुए या जबरदस्ती छूने की कोशिश करे तो आपको घबराहट होती है, डर लगता है और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत से बच्चे सहम जाते हैं, मगर बच्चों, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जोर से ऊंची आवाज में नो, नहीं कहना है और उस जगह से तुरंत दूर चले जाइए। ऐसे में कुछ बच्चे डर कर अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताते हैं। बच्चों, आपको कभी भी अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, उन्हें सारी बात तुरंत बताएं। और हर माता पिता को भी आजकल के समय में बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी जरूर देनी चाहिए। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 में लागू किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है और अपराधियों को ये कठोर दंड सुनिश्चित करता है। आप अपनी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी दर्ज करा सकते हैं। बच्चों, आपको भी हर समय सजग रहना है, सतर्क रहना है और अगर ऐसा कुछ आप महसूस करें तो तुरंत अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताएं। डरना नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना है ना? तो बच्चों, चलिए कार्यक्रम में अब करते हैं आपका थोड़ा मनोरंजन और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: बच्चों, कार्यक्रम में अब वक्त है बाल प्रस्तुतियों को सुनने का। चलिए सुनते हैं पहली प्रस्तुति।
1: मेरा नाम दक्षा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हूँ। मेरे मन में जोश तुम्हीं से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुम से आटा, तुम से ही विश्वास। थैंक यू। माय नेक्स्ट बॉब डेव इज माय बाइसाइकल। आई हैव अ रेड बाइसाइकल, आई पैडल एंड आई राइड, चिट चिट चिट गोस द बेल, मेक्स माय फ्रेंड मूव असाइड। That seat is blue in color, the tires and pedals are black, sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on check. To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. Thank you.
0: अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

0: you for all you do. I love you for being you. Daddy, Daddy, let me say Happy Father's Day. Thank you.
1: आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है एक बच्ची, चलिए जानते हैं उसका नाम। बेटा अपना नाम बताइए पहले।
2: मेरा नाम टीना है।
1: अच्छा टीना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ।
1: कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। और बताइए टीना, आप क्या क्या करती हैं, क्या क्या शौक है आपको?
2: मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, घूमना भी अच्छा लगता है, और जैसे डांस करना भी मुझे अच्छा लगता है।
1: डांस भी करती हैं आप? अच्छा टीना बताइए, आप आज हमें क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है अगर पेड़ भी चलते होते।
1: कुल चलिए सुनते हैं कविता, सुनाइए।
2: अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांधने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, लती भूख यदि अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बार कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने से हमारे होते। धन्यवाद।
1: अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति।
3: माय नेम इज जहान पहावा, आई स्टडी इन क्लास 4th। माय पोम नेम इज द मून स्पीक्स। I the moon would like it know, I never follow people whom I simply do not have the time and neither do I ever shine. For what you often see at night is my reflecting solar light. And I am not cheese, no none of these, no mozzarella cheddars, brice, all you will find here. If you please are my dusty empty seas, cows do not jump over me. Now that is empty lunacy, to come and visit me, or to return I am lonely seas. Thank you.
1: अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति।
4: मेरा नाम आदर्श भट्ट है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिदो झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पक पक चहर रही है, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। धन्यवाद।
5: My name is Avni Pahava. I study in class 7th. My poem name is Break, Break, Break. Break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. O well for the fisherman's boys, who that he shouts with his sister at play. O well for the sailor lad, that he sings in his boat on the bay. And the stately ships go on to their heaven under the hill. But oh, for the touch of a vanished hand, and the sounds of a voice that is still. Break, break, break at the foot of thy crags, O sea, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. Thank you.
6: मेरी दूसरी कविता का नाम वर्ष गीत है। बर्फ बिछाता हुआ रहा में सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है, होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है, आता है जब मई पसीने में सब हो जाते हैं तर, जून उष्मा लेकर आता तप जाते हैं गांव नगर, तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल, मशक लिए आता अगस्त है खूब छिड़कता रहता जल, हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है, अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर भाता है, आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है, जलद करो लिहाफ निकालो सुनो दिसंबर आता है। धन्यवाद।
1: अरे वाह अवनी, आपने तो अपनी कविता के जरिए हमें सारे सीजन की सैर करा दी, बहुत खूब। अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति।
7: मेरा नाम लोडल है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ है। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन को हलने वाली। पर पेड़ और प्रकृतियों का नाता जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। धन्यवाद।
1: हमारे साथ एक और बच्ची है, चलिए करते हैं उससे बात। बेटा आपका नाम क्या है?
8: मेरा नाम ईशानी है।
1: ईशानी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
8: मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा ईशानी, आप तो आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है ना?
8: हाँ स्टार्ट हो गई।
1: ईशानी आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेंगी?
8: मैं सबसे पहले अपना जल्दी जल्दी हॉलीडे होमवर्क खत्म करूंगी।
1: अरे वाह।
8: फिर मैं छुट्टियों को बहुत इंजॉय करूंगी।
1: अच्छा,
8: और मैं बाद में स्विमिंग क्लास ज्वाइन करूंगी।
1: अच्छा स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे आप छुट्टियों में?
8: हाँ।
1: अच्छा लगता है आपको स्विमिंग करना?
8: बहुत पसंद है।
1: अच्छा ईशानी आप बताइए कि आप आज हमें क्या सुनाएंगी?
8: आज मैं आपको हिंदी की कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रकृति के रंग निराले।
1: सुनाइए।
8: प्रकृति की है लीला न्यारी है, इसके रंग निराले। कभी चमकती धूप छाओ तो कभी है बादल काले काले। कहीं तो इसने रेगिस्तान बनाया बर्फ जमी पर, कहीं बिछारे पर्वत कहीं खड़े किए तो कहीं ये नदियां भी बहाले। इसने सभी जीव जंतु है पाले, धरा का प्रदूषण भी है संभाले। समय जो कोई साथ बिताता प्यार से उसको गले लगा ले। प्रकृति से जब प्रेम करोगे तभी सुनहरे कल से मिलोगे, ना जो इसकी कद्र करोगे बच्चों आगे हाथ मलोगे। धन्यवाद।
1: बहुत खूब ईशानी। हमारे साथ एक और बच्ची है जिसका नाम है आन्या। तो जानते हैं आन्या आज हमको क्या सुनाने वाली है?
9: आज मैं

0: धन्यवाद।
1: आन्या, अच्छा गीत सुनाया आपने, और कुछ भी सुनाना चाहते हो आप?
0: हाँ दीदी, मैं आपको एक इंग्लिश का सॉन्ग भी सुनाना चाहती हूँ।
1: चलिए तो फिर सुनाइए।
0: इफ

0: थैंक यू।
1: बहुत खूब आन्या। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी है। बच्चों, कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं एक बाल कहानी। एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। वो रोज सुबह अपने कंधों पर बड़ा सा डंडा रखता और डंडे के दोनों तरफ दो घड़े लटका देता, फिर तालाब जाकर रोज अपने घर पानी लेकर आता था। गोपी के दोनों घड़े काफी पुराने हो चुके थे और उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। उसमें दरारें पड़ गई थी जिससे पानी गिरता रहता था। जब गोपी पानी लेकर घर पहुंचता तो दो घड़े पानी के बजाय केवल डेढ़ घड़ा पानी ही घर तक पहुंचता। दोनों घड़ों में से जो घड़ा सही था उसे बहुत घमंड होता था और वो हमेशा फूटे घड़े को बार बार चिढ़ाता था कि देखो, मैं तो गोपी के बहुत काम आता हूँ, मैं उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं करता, और एक तुम हो जो किसी काम के नहीं हो। जब गोपी को पता चलेगा कि तुम फूट गए हो तो वो तुम्हें फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। ये सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा और सोचता कि गोपी किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन मेरी वजह से उसका आधा पानी रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है, आखिर मैं किस काम का हूँ। उससे रहा नहीं गया और एक दिन घड़े ने गोपी को सब सच बता दिया कि मालिक, मेरी वजह से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचता, रास्ते में ही गिर जाता है। अब आप मुझे छोड़ दो और एक नया घड़ा ले आओ, मुझे बुरा लगेगा मगर मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। घड़े की सारी बात सुनकर गोपी मुस्कुराया और बोला, अरे दुखी मत हो, जब कल हम तालाब से पानी लेकर लौटेंगे तो रास्ते में एक चीज देखना, तब हम बात करेंगे। अगले दिन गोपी फिर घड़े लटका कर पानी लेने चला गया। लौटते वक्त रास्ते में फूटे घड़े ने देखा कि रास्ते के किनारे बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूलों को देखकर घड़ा बहुत खुश हुआ, उसकी सारी उदासी मानो दूर हो गई। घर पहुंचकर गोपी ने घड़े से पूछा, कैसे लगे फूल? फूटा हुआ घड़ा बोला कि हाँ, आज रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। ये कहकर घड़ा फिर से उदास हो गया और बोला, मगर मालिक, मुझे दुख इस बात का है कि आज भी आपका आधा पानी बर्बाद हो गया। गोपी ने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हें पता है वो सारे फूल तुम्हारी तरफ ही क्यों खिले थे? जानते हो, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम फूट चुके हो, तो मैं बाजार से फूलों के बीज लाया और पूरे रास्ते में जिस तरफ तुम लटकते हो बीज बो दिए। जब भी मैं पानी लेकर आता तो तुमसे पानी गिरता और उन बीजों की सिंचाई हो जाती और धीरे धीरे वहां इतने सुंदर फूल खिल गए, पूरा रास्ता सज गया, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। बच्चों, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें तो हमारी कीमत सही घड़े से भी ज्यादा हो जाती है। आप जैसे हैं, आपको खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी कमियों की वजह से खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपनी सारी कमियों को दूर करना चाहिए, अपनी कमियों पर काम करना चाहिए, ना कि उनके बारे में सोचकर उदास रहना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई ना? बच्चों, अपनी छुट्टियों को खूब एंजॉय कीजिए, खेलिए कूदिए, मगर थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को भी जरूर दीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का बाल मंडल कार्यक्रम। बच्चों, अगर आप भी बाल मंडल कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शनिवार 3:30 बजे आकाशवाणी स्टूडियो आइए, यहाँ हम करेंगे आपके प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग्स, जिनका प्रसारण होगा अगले दिन रविवार 12:30 बजे बाल मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बच्चों, अब अपनी सुमन दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
2: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल मंडल आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
4: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
3: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
4: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
3: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रचा। मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटकों की सुविधाओं की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को

0: पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका ही बाहर रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रच दिया है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 10,497 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण इस वर्ष यात्रा ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। यह उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को भी दर्शाती है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम परिसर में व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
2: श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे और अभी एक माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। करीब 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में उत्साह पूर्वक यहाँ पर आकर सुगम दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों के ही द्वारा यहाँ पर लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो पार्किंग व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, पैदल मार्ग हो या फिर केदारनाथ धाम की व्यवस्था। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं का सुरक्षित यहाँ पर यात्रा रहे और सुगम उनको दर्शन कराए जाएं। जो हमारी प्रशासन की टीम है वो और पुलिस की टीमें जो अतिरिक्त हमारे यूनिट्स हैं, चाहे SDRF के हों, चाहे आपदा की DDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, CAPF की टीम हो, वो यहाँ पर पूरे यातायात के रूट पर, पैदल मार्ग पर और श्री केदारनाथ धाम में भी लगी हुई है ताकि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: अल्मोड़ा के जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने कल जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने पनुआनौला में बिखरे पड़े कूड़े पर नाराजगी जाहिर की तथा कूड़े के समुचित प्रबंधन के लिए संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। यहां उन्होंने पार्किंग की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधितों को कहा कि पार्किंग के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अर्तोला पार्किंग में यातायात व्यवस्था तथा साफ सफाई आदि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा कहा कि जागेश्वर धाम में बढ़ती पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्थाओं को विस्तृत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि अर्तोला पार्किंग को मल्टी स्टोरी पार्किंग के रूप में विस्तारित करने के लिए आगणन बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने यहां कूड़ा प्रबंधन और शौचालयों की नियमित साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। देहरादून समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। कल रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक रुक रुक कर जारी है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में भारी वर्षा, आंधी तूफान एवं अन्य प्रतिकूल मौसम गतिविधियों की प्रबल संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावित आपदा परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र बलों ने लगातार अपनी पेशेवर दक्षता और अभियानों को निष्कर्ष तक पहुंचाने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है और वे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर है। दोनों पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच बद्रीनाठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी के बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्य के चलते यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सड़क के कुछ हिस्सों में ऊंचे नीचे स्तर और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बीच बीच में वाहनों के खराब होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में चमोली पुलिस ने प्रभावी गेट सिस्टम लागू किया है। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ तस्वीरों को जाम की स्थिति बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तव में वे गेट सिस्टम के तहत व्यवस्थित रूप से खड़े वाहन हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मार्ग पर यातायात नियंत्रित, सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सोलर पैनल लगाए गए। यह पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए हैं और महाराष्ट्र गुजरात के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां अब तक 6,00,000 से अधिक छतों पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रचा। मात्र 39 दिनों में 10,00,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटकों की सुविधाओं की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसको गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इस गीत को संगीतमय किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है हंगामा।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनाते हैं अगला प्यारा सा गीत फिल्म यश बॉस से, और इस गीत को गाया है अभिजीत ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।

0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, संगीत के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये अगला बेहतरीन गीत। फिल्म का नाम है जाने मन और इस गीत को गाया है सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और कृष्णा ने।

0: दिनों बाद।
1: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो आपके दिन को और भी खास बना देगा। तो श्रोताओं, पेश है ये अगला गीत साधना शरगम और शान की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ ना कहूँ।

श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा इस कार्यक्रम में। तो अब सुनिए ये शानदार गाना। फिल्म का नाम है हम तुम और इस गीत को गाया है साधना सरगम और सोनू निगम ने। इस गीत के बोल लिखे हैं प्रशून जोशी ने और इस गीत को म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, दिलों की धड़कनों को सुरों से सजाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बारी है अगले गीत की, जिसको गाया है शान गायत्री और कुणाल गांजेवाला ने। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

श्रोताओं, सुरों की इस महफिल में अब एक और खूबसूरत रंग भरने का समय आ गया है। तो पेश है ये अगला गीत फिल्म कास्ट एंड क्रू से, जिसको गाया है उदित नारायण, जयेश गांधी और अलका याग्निक ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की

0: 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।

0: क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल।

0: की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर लक्षद्वीप केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 2:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों। श्रोताओं, कुछ लोग जीवन जीते हैं और कुछ लोग ऐसा इतिहास रचते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। कमांडो ज्योति प्रकाश निराला उन्हीं अमर वीरों में से एक हैं। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को सुनाते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसको गाया है हरिहरन ने। फिल्म का नाम है रोजा।

साथियों, 15 नवंबर 1986 को बिहार के रोहतास जिले के एक साधारण परिवार में जन्मे ज्योति प्रकाश निराला का बचपन किसी बड़े शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि संघर्षों और सपनों के बीच बीता। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और कुछ बड़ा करने का जज्बा था। यही सपना उन्हें भारतीय वायुसेना तक ले गया, जहां उन्होंने वर्ष 2005 में वायु सैनिक के रूप में अपनी सेवा शुरू की। बाद में उन्होंने भारतीय वायुसेना की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित विशेष बल इकाई गरुड़ कमांडो फोर्स का हिस्सा बनने का फैसला किया। गरुड़ कमांडो बनने की ट्रेनिंग बेहद कठिन मानी जाती है, जहां शारीरिक और मानसिक क्षमता की हर सीमा को परखा जाता है। ज्योति प्रकाश ने यह चुनौती स्वीकार की और एक उत्कृष्ट कमांडो बनकर उभरे। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हैं, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं ये अगला गीत कविता सेठ की आवाज में। फिल्म का नाम है नीरजा।

साथियों, फिर आया वो दिन जिसने ज्योति प्रकाश निराला जी को अमर बना दिया। 18 नवंबर 2017 की सुबह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी एक गांव में छिपे हुए हैं। तुरंत एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। कमांडो ज्योति प्रकाश निराला भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे। जैसे ही सुरक्षा बल आगे बढ़े, आतंकवादियों ने अचानक से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। इसी दौरान निराला ने एक आतंकवादी को भागने की कोशिश करते हुए देखा। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसका पीछा किया। मुठभेड़ के दौरान उन्हें कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। उन्होंने आतंकवादी को ढेर कर दिया और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। खून बह रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया। श्रोताओं, आगे आपको सुनाते हैं एक और गीत फिल्म स्वदेश से, उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजों में।

साथियों, उनकी वीरता इतनी असाधारण थी कि भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल बहादुरी के लिए नहीं था, बल्कि उस अदम्य साहस के लिए था जिसने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा सैनिक अपनी अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। आज कमांडो ज्योति प्रकाश निराला केवल एक नाम नहीं है, बल्कि साहस, समर्पण और देशभक्ति की जीवंत मिसाल हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के पीछे अनगिनत ऐसे वीर होते हैं जो अपने सपने से पहले देश के सपने को रखते हैं। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत, फिल्म लक्ष्य से शंकर महादेवन की आवाज में।

0: साथियों, वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। कमांडो ज्योति प्रकाश निराला का बलिदान हमेशा हमें यह सिखाता रहेगा कि देशभक्ति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ न्यौछावर कर देने का नाम है। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म मणिकर्णिका से शंकर महादेवन और प्रसून जोशी की आवाजों में।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 134वें संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को प्रेरित करने वाला एक सशक्त माध्यम बन गया है। रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से हो रही लगातार बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लिया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर है। दोनों पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच चमोली पुलिस ने प्रभावी गेट सिस्टम लागू किया है। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रच दिया है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कल जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल्स में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3:02 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर पंकज गर्ग से संकल्प मिश्रा की बातचीत।
2: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज गर्ग, जो कि पेशे से एक वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आज हमारी इनसे बातचीत का विषय है तंबाकू से होने वाले रोग, उनके कारण, लक्षण और उनके उपचार पर। डॉक्टर पंकज, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: डॉक्टर पंकज, हम बहुत से एड्स में देखते हैं, सरकार ने बार बार इस बात के प्रयास किए हैं कि तंबाकू का जो सेवन है उसको रोका जाए, जिसका असर और उसका फल स्वरूप जो कैंसर है वो बड़ा घातक होता है। और मूवी थिएटर्स में देखते हैं, फिल्म से पहले एड्स दिखाए जाते हैं जो वो बड़े भयावह होते हैं। लगता है कि डर पैदा किया जाए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए। आप एक वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर क्या सलाह देते हैं इस बात में, वैसे कितनी सच्चाई है, शोध क्या बताते हैं?
0: आज आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया है, क्योंकि तंबाकू से कैंसर के होने या नहीं होने को लेकर लोगों में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। तो आज मैं इस मौके पर ये बात बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कैंसर तंबाकू की वजह से होता है। ये किसी भी इंसान के मन में इसको लेके कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आप कैंसर को खुला निमंत्रण दे रहे हैं, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अगर हम भारत की जैसे बात करें तो भारत में अगर करीब करीब 8 से 10 लाख मृत्यु जो होती हैं वो कैंसर की वजह से होती हैं, उसमें एक बड़ा नंबर है जो उन कैंसर की वजह से होता है जो तंबाकू की वजह से होते हैं कैंसर। तो आज जब हम 31 मई के दिन वर्ल्ड नो टबैको डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस मैसेज को बहुत ही साफ रूप से सभी के बीच में जाना चाहिए कि तंबाकू इसका मतलब कैंसर है। अगर हम तंबाकू से दूर रहेंगे हम कैंसर से दूर रहेंगे।
1: कैंसर के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, ओरल कैंसर की बात करें या लंग कैंसर की बात करें। आपके सामने जब कोई मरीज आता है, आप लोग का अनुभव बड़ा है, आप लोग को कैसे पता लग जाता है कि ये कैंसर जो है वो रिजल्टेंट है तंबाकू के सेवन का?
0: आपने बहुत ही अच्छा बताया कि कैंसर होने की बहुत सारी वजह होती है, बट तंबाकू उसमें एक प्रमुख वजह है। तंबाकू बहुत प्रकार के कैंसर करता है, लेकिन जो कॉमन कैंसर तंबाकू से होते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोग तंबाकू का सेवन डिफरेंट प्रकार से करते हैं। जैसे कि तंबाकू को हम गुटखा, जर्दा, खैनी के रूप में खाते हैं, तो जब हम इस तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उनको यूजली थ्रोट का कैंसर या गले का कैंसर या लंग कैंसर होता है। इसके अलावा पेट में होने वाला स्टमक कैंसर या हमारे आमाशय का कैंसर या फिर पेशाब की थैली का कैंसर भी तंबाकू करता है। अब अगर हम इस तरह से देखें कि अगर कोई आदमी खैनी खा रहा है या जर्दा खा रहा है या फिर गुटखा खा रहा है, तो इससे मुंह का कैंसर होगा उसको। यूजली लोगों को छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिनमें दर्द नहीं होता, और उनको ये लगता है कि ये अभी हुए हैं और ठीक हो जाएंगे, और वो इंतजार करते हैं, लेकिन ये एक कैंसर की शुरुआत हो सकती है। और अगर इसी को अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने जैसे जैसे निकलते हैं, वैसे वैसे ये छाला बढ़ता है और कैंसर एक बड़ा रूप लेता है। इसी तरह से अगर हमें कोई खांसी है जो बहुत लंबे समय तक रह रही है, तो वो खांसी भी किसी ना किसी तरह से हमें ये बताती है कि ये कैंसर की वजह हो सकती है। इसी तरह से आवाज में अगर कोई चेंज आ रहा है, हमारे गले में लगातार दिक्कत हो रही है, हमें खाने निगलने में दिक्कत हो रही है, सांस निगलने में दिक्कत हो रही है, या फिर हमारी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो ये सारे एक तरह से इंडिकेटर होते हैं, हमें ये बताते हैं कि इन परेशानियों की वजह कैंसर भी हो सकती है।
1: हम खासकर अगर बात करें सिगरेट के सेवन से होने वाले कैंसर के बारे में, किस तरह के पहले सिम्टम्स रहते हैं जिनके दिखाई देने पर तुरंत किसी पेशेवर डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए?
0: बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जो एक स्मोकिंग है ये बहुत कॉमन है हमारे देश में, और जो गांव है उनमें भी जो बीड़ी का सेवन है वो बहुत हो रहा है। अगर जो लोग भी बीड़ी का सेवन कर रहे हैं या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर उनको खांसी लगातार रह रही है जो 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है, या आवाज में उनके कोई बदलाव आ रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये कैंसर का एक साइन या सिम्टम हो सकता है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमारे देश में टीबी की बीमारी भी बहुत कॉमन है, और ये सारे लक्षण टीबी के भी होते हैं। और बहुत बार ये होता है कि मरीजों को टीबी की दवाई शुरुआत कर दी जाती है ये सोचते हुए कि ये जो लक्षण हैं ये टीबी के हैं, और मरीज को जब 1 महीने 2 महीने टीबी की दवाई लेता है और ठीक नहीं आता, तो फिर जब उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो कैंसर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको, जो भी स्मोकर्स हैं, जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, खांसी होने लगे, बलगम में खून आने लगे या आवाज बदलने लगे, तो ये सिम्टम है, लक्षण है कैंसर होने के, तुरंत एक ऑन्कोलॉजिस्ट से आप जाके मिलें।
1: डॉक्टर साहब, जब कोई मरीज आता है, आपने बताया कि कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, टीवी के भी लक्षण कैंसर से मिलते जुलते होते हैं, वो कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं प्राथमिक तौर पर जिससे प्रामाणिक तौर पर ये कहा जा सके कि ये कैंसर का ही केस है?
0: आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो टीबी का और जो कैंसर, जो कि फेफड़े का कैंसर है, इनके लक्षण काफ़ी मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि टीबी की दवाई शुरू कर दी जाती है जबकि पेशेंट को कैंसर होता है। अब क्योंकि समय जैसे जैसे निकलता है, कैंसर बढ़ता है और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम एक चीज़, जो कि भारत सरकार भी कहती है, टीबी की दवाई सिर्फ और सिर्फ तब शुरू करनी चाहिए जब हमें कंप्लीट रूप से हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि मरीज को टीबी है। किसी भी मरीज को टीबी की दवाई सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं शुरू करनी चाहिए, और हमें आगे भी जांच करनी चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं उसको कोई और बीमारी तो नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कैंसर सुनने में जितना भयावह लगता है, वैसे ही लोग इस स्थिति से भी बचना चाहते हैं। अब किस स्टेज पर मरीज, अगर आप जागरूक मरीज आपके पास आ जाए, उसका बचाव किया जा सकता है? क्या ऐसे में कोई स्टेज ऐसी भी आती है जहां पर मरीज आपकी बातों का पालन करे तो सामान्य जीवन जी सकता है?
0: इस बात को मैं इस तरह से कहता हूँ कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी स्टेज का मतलब ये होता है कि जब कैंसर शरीर में फैल गया है, यानी अगर वो फेफड़े में बना है तो बाकी हिस्सों में भी चला गया है, जैसे कि लिवर है, ब्रेन है, पेट है। अभी हमने अपनी उत्तराखंड में गढ़वाल जो एरिया है, यहाँ पे एक स्टडी की, और वहाँ हमें पता चला कि जो 100 में से 80% कैंसर हैं वो हमारे स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े हुए हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में जब कैंसर आता है तो उसके ठीक होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा है। वही कैंसर जब स्टेज 3 और 4 में हो जाता है तो उसके जो ठीक होने की संभावना है वो घट के 20 से 30% रह जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में ये जागरूकता लेके आएं कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं, ताकि हम कैंसर को अर्ली स्टेज या जल्दी शुरुआत की स्टेज में पकड़ सकें। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहली चीज ये होगी कि हम लोगों में ये जागरूकता लेके आए कि तंबाकू का सेवन, चाहे वो बीड़ी की फॉर्म में कर रहे हो, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, खैनी है, किसी भी प्रकार से है, तंबाकू का सेवन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तंबाकू का सेवन एक खुला आमंत्रण है कैंसर के लिए। तंबाकू से न सिर्फ कैंसर होता है बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो तंबाकू को तो हमें बिल्कुल ना करना होगा। हमारे बच्चों को, हमारे जो यूथ है उसमें बड़ा क्रेज है आजकल टबैको के लिए, जिस तरह से तंबाकू को ग्लैमराइज किया जा रहा है और वो इस जो जनरेशन है वो भाग रही है तंबाकू के लिए। ये जो यूथ है ये हमारा भविष्य है, और अगर इस भविष्य को हम बचाना चाहते हैं तो उनको हमें इस तंबाकू से बचाना पड़ेगा, ताकि वो तंबाकू नहीं लेंगे तो कैंसर नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। युवाओं को तंबाकू से जरूर बचाना चाहिए, लेकिन आजकल एक कल्चर और आ रहा है, जो युवा तंबाकू का सेवन को छोड़ रहे हैं वो दूसरी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वेपिंग का कल्चर आता जा रहा है भारत में, पश्चिमी प्रभाव का एक असर है। ये कितना घातक हो सकता है, इसके बारे में भी संक्षेप में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और लोगों में ये है कि वो ई सिगरेट या वेपिंग की तरफ जाएंगे तो वो कम खतरनाक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे जो पश्चिमी देश हैं उनमें भी धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, चाहे वो वेपिंग हो या ई सिगरेट्स हो। अभी बहुत रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी बैन किया गया है, इंग्लैंड में भी बैन किया गया है। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है, हमें तंबाकू को किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। इस बात को हमें युवाओं को बताना पड़ेगा, उनको ये बात अच्छे से समझानी पड़ेगी। और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि इस बात को हमें इस तरह से रखना होगा कि तंबाकू मतलब कैंसर। तो अगर आप कैंसर से बचना है तो तंबाकू को किसी भी फॉर्म में रोकना होगा। एक और चीज कही जाती है कि अगर हम कम मात्रा में ले रहे हैं, अगर हम 1 सिगरेट या 2 सिगरेट ले लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। टबैको बहुत एक अडिक्टिव होता है, तो अगर आज 1 सिगरेट ले रहे हैं, कल आप 5 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। तो इसलिए तंबाकू को तो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से रोकना होगा।
1: डॉक्टर पंकज गर्ग, आप कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के मन में भी आता है, आज से 1 या 2 दशक पहले जब हम कैंसर की बात करते थे तो लोग उसे सीधे मौत से जोड़ करके देखते थे। आज हम जब इंटरनेट एज में बैठे हुए हैं, तकनीकी लिहाज से अगर बात करें तो आज बहुत कुछ संभव हो चुका है। ऐसे में कैंसर के इलाज के लिए क्या नई रोशनी देखने को मिल रही है, इलाज में कितना परिवर्तन आ गया है? आपने स्टेज वन और स्टेज टू की बात की जहां पर कैंसर का इलाज 80% तक संभव है। क्या नई नई चीजें आज देखने को मिल रही है और भविष्य में आने वाले 10 सालों में क्या नए बदलाव आ सकते हैं?
0: नहीं, आपने बहुत सही कहा कि एक समय में कैंसर को एक डेथ सेंटेंस कहा जाता था कि जिस पेशेंट को कैंसर हो गया है अब उसकी मृत्यु

0: आने वाली है। लेकिन पिछले 20 सालों में मेडिकल साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुई है, कैंसर के इलाज में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है। आज हमारे पास कैंसर की दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी कैंसर की दवाइयां हैं, सर्जरी की टेक्निक बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, रेडिएशन की टेक्निक बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। तो आज के समय में अर्ली स्टेज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ही, इवन जो एडवांस स्टेजेस हैं, जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के ट्यूमर हैं, उनमें भी आज के समय में रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हो गए हैं और मरीज न सिर्फ महीने सालों भी जिंदा रह रहे हैं। तो ये भी एक जो चीज़ है, हमें लोगों में हमें ये जागरूकता लानी होगी कि या तो जल्दी आएं, जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन बहुत बार गांवों में ये स्पेशली देखते हैं कि भाई अब एडवांस हो गया है, अब इलाज करा के फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर में भी आज इलाज के नए रास्ते खुले हैं और रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं।
1: डॉक्टर पंकज गर्ग, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने तंबाकू से जुड़े हुए कैंसर के रोकथाम के लिए उनके कारण, लक्षण और उपचार पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर पंकज गर्ग से संकल्प मिश्रा की बातचीत आकाशवाणी देहरादून से FM 107.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने, जिसकी शुरुआत हम करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, फिल्म हीरोज से, जिसको गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनाते हैं कुणाल गांजीवाला की आवाज में। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: श्रोताओं, म्यूजिक का सफर जारी है और अब वक्त है अगले ट्रैक का। तो पेश है आपके लिए मेलोडी जिसको गाया है महालक्ष्मी अय्यर, हार्डकोर और जस्सी ने। फिल्म का नाम है पटियाला हाउस।
1: दिस इज समथिंग

श्रोताओं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो यकीन मानिए अगला गाना आपकी मुस्कान को और बढ़ाने वाला है। तो पेश है ये अगला गीत राशिद अली की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना।

श्रोतम कार्यक्रम गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। तो कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको ये अगला गीत सुनाते हैं फिल्म गजनी से, जिसको गाया है श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओं, चलिए अब वाइब्स को थोड़ा और बढ़ाते हैं और पेश है ये अगला शानदार गाना फिल्म तमाशा से, जिसको गाया है मिका सिंह और नक्श अजीज ने।

श्रोताओं, हर धुन अपने साथ एक एहसास लेकर आती है। आइए महसूस करते हैं उसी एहसास को इस अगले गीत में, जिसको गाया है सनम पुरी और शिप्रा गोयल ने। फिल्म का नाम है हंसी तो फंसी।

श्रोताओं, उम्मीद है ये सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा। अब बारी है एक और शानदार गीत की, जिसको गाया है खेसारी लाल यादव, माशूम शर्मा, देव नेगी, प्रीतम, निकिता गांधी और आकाशा ने। फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, जिसको गाया है विशाल डडलानी और पायल देव ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसको गाया है जसलीन रायल, हरदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी देहरादून है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस। रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। अब श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल क्षेत्र में एक महिला पर्यटक के लापता होने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। टिहरी जिले के धनौल्टी क्षेत्र स्थित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट धनौल्टी नीलू चावला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के डोभालवाला वार्ड का भ्रमण कर क्षेत्र में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। चारधाम यात्रा मार्ग पर प्रतिकूल मौसम को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया लगातार मौसम की स्थिति, होल्डिंग क्षेत्रों एवं यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। चमोली के नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी द्वारा किया गया। इस रन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों विषय पर पौड़ी मुख्यालय में 2 दिन तक चला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। शाम के 4:02 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गुलाम साबिर का सारंगी वादन।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गुलाम साबिर का सारंग वादन आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 4:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें सभी लोग KK के नाम से जानते हैं।

श्रोताओं, कुछ गायक गाने गाते हैं लेकिन कुछ गायक हमारी जिंदगी के एहसास बन जाते हैं। के उन्हीं आवाजों में से एक थे। भारतीय संगीत जगत में जब भी सबसे भावुक, दिल को छू लेने वाली और सुकून देने वाली आवाजों की बात होगी, तब के का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ। फिल्म का नाम है वो लम्हे।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। बचपन से उन्हें संगीत का गहरा लगाव था। वे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। कॉलेज के दिनों में भी वे संगीत से जुड़े रहे और धीरे धीरे उनकी आवाज़ करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गई। मुंबई आने के बाद फिल्मों में गाना गाने से पहले केके ने लगभग 3500 से अधिक विज्ञापन जिंगल्स गाए और यही अनुभव आगे चलकर उनकी गायकी की सबसे बड़ी ताकत बना। वर्ष 1996 में उन्हें फिल्म माचिस में गाने का अवसर मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें 1999 में अपने एल्बम पल से मिली। इस एल्बम के दो गाने पल और यारों युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको अगला गीत सुनाते हैं, फिल्म ओम शांति ओम सी।

केके की असली जादूगरी उनकी आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, रोमांस भी था, उम्मीद भी थी और सुकून भी। शायद यही वजह थी कि वो किसी एक तरह के गायक बनकर नहीं रह गए, उन्होंने हर भावनाओं को अपनी आवाज़ दी। जब उन्होंने तड़प तड़प के गाया तो लोगों ने टूटे हुए दिल की पीड़ा महसूस की। जब उन्होंने क्या मुझे प्यार है गाया तो युवाओं को पहली मोहब्बत का एहसास हुआ। जब आंखों में तेरी सुनाई दिया तो वो प्रेम का एक खूबसूरत एहसास बन गया। और जब तू जो मिला आया तो लोगों ने उम्मीद और अपनापन महसूस किया। इन गीतों ने केके को केवल गायक नहीं बल्कि एक भावना बना दिया। केके ने अपने करियर में कई हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में हजारों गाने गाए। वे भारत के सबसे बहुमुखी प्लेबैक सिंगर्स में गिने जाते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं केके का एक प्यारा खूबसूरत सा गीत फिल्म बजरंगी भाईजान से।

महान पार्श्व गायक केके ने अपने हिंदी गायन करियर में 6 फिल्मफेयर और 2 स्क्रीन अवार्ड सहित नामांकन प्राप्त किए। केके ने 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड जीते, साथ ही उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी यानी कि IIFA पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया। इसके अलावा गैर फिल्म एल्बम्स और क्षेत्रीय गानों के लिए भी उन्हें कई मौकों पर सम्मानित किया गया। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनाते हैं केके का ये बहुत ही प्यारा गीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: श्रोताओं, 31 मई 2022 को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद अचानक केके की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही समय बाद उनके निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। करोड़ों प्रशंसकों को ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी यादों की आवाज उनसे दूर चली गई हो। लेकिन कलाकार कभी सचमुच नहीं जाते। कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी कीमती हो जाती हैं। के ऐसी ही एक आवाज थी। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि करोड़ों लोगों को मोहब्बत, दोस्ती, बिछड़ने का दर्द और जिंदगी की खूबसूरत यादों को सुर दिए। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं के नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज हर उस दिल में जिंदा है जिसने कभी प्यार किया है, दोस्ती निभाई है या किसी को याद किया है। तो श्रोताओं, अब आपको

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज के हमारे कलाकार थे पार्श्व गायक के।
1: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन

0: राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

युवाणी आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में शाम 5:10 पर ग्राम जगत का समय होगा, शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे श्रोताओं का अनुरोध मां।

कृषि जगत का समय होगा शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत होगी भेंट वार्ता सफल कृषक श्री ओमवीर सिंह से। कृषि और बागवानी विषय पर विकास चमोली की होगी बातचीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। स्पॉटलाइट का समय होगा रात्रि 9:15 पर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अनुगूंज आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, इसे भी हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा होगी रात्रि 10 बजे, जिसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ संक्षिप्त रूपरेखा बतला देते हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे कल प्रातः 6:10 पर। श्री रामचरित मानस गान आप सुन पाएंगे कल प्रातः 6:40 पर। फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे चित्ररागनी कल प्रातः 7:10 पर। शैल संगीत का समय होगा कल प्रातः 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे लता पांडे और साथियों की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप तक पहुंचेगा कल प्रातः 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीत आप तक पहुंचेगा कल प्रातः 9:00। सेहत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 9:45 पर, जिसके अंतर्गत होगी भेंटवार्ता, दांतों की उचित देखभाल, डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन से होगी विकास चमोली की बातचीत। लोक संगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 10:35 पर। और व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा कल दिन 11:00। सुगम संगीत आप तक पहुंचेगा कल प्रातः 12:12 पर। घर गृहस्थी महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल दोपहर 12:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 1:15 पर। और सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा कल दोपहर 2:30 पर। गाने नए तराने आप सुनेंगे कल दोपहर 3:02 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे कल शाम 4:02 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हरिकृष्ण शाह का सितार वादन राग

शुद्ध सारंग और मांड में। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक कलाकार, कल शाम 4:30 पर हमारी कल की कलाकार है नरगिस, अभिनेत्री नरगिस। ग्राम जगत होगा कल शाम 5:45 पर और कृषि जगत आप तक पहुंचेगा कल शाम 7:00। कल शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम गरीब कल्याण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। कवि गोष्ठी होगी कल रात्रि 10:00 और आपकी फरमाइश आप तक पहुंचेगी कल रात्रि 11:00। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं, लीजिए सुनिए युवाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। आज के खूबसूरत सफर में मैं आपके साथ एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट का ये सफर तय करने आ गई हूँ, आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा शर्मा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने वीकेंड को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों एंजॉय करें भी क्यों ना भाई, मौसम भी तो कितना अच्छा और सुहावना हो गया है हमारे देहरादून का इन 2 से 3 दिनों में। तो दोस्तों मौसम से ही मिलता जुलता गीत सुनाते हैं आपको शुरुआत में ही, जिसे हमने लिया है फ्रॉम द मूवी गुरु और जिसे आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने।

100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप सभी ने ट्रैक जरूर एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसी योजना की जो न केवल आपके घर को रोशन कर सकती है बल्कि आपके बिजली के बिल को भी काफी हद तक कम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। आज के समय में बिजली हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, लेकिन बढ़ते बिजली का बिल कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसी पहल की है जिससे लोग अपनी छत पर सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का उपयोग करके बिजली बना सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य देश भर के करोड़ों परिवार को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। इसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी भी प्रदान करती है। इससे सोलर पैनल लगवाने का खर्च भी काफी कम हो जाता है। सोचिए, सूरज की किरणों से बनने वाली बिजली आपके घर की जरूरतें पूरी करे और हर महीने आने वाला बिजली का बिल भी कम हो जाए। यही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, हमारा इंफोटेनमेंट का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। इससे पहले सुन लीजिए ये ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे पीएम सूर्य घर योजना की। यह योजना 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है और सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 तक की सब्सिडी भी देती है। दोस्तों, 1 किलोवाट सिस्टम पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम पर 78,000 तक की वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी सीधा बैंक खाते में दी जाती है और हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त भी आपको मिलती है। पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को सरकार द्वारा वापस ग्रिड में खरीदा जाता है, जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको आसान लोन सुविधा भी मिल जाती है। सोलर प्लांट लगवाने के लिए लगभग 7% ब्याज दर पर 2 लाख

इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें, लॉगिन कर मांगी गई जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन पास होने के बाद आप अपने क्षेत्र के किसी पंजीकृत वेंडर से सोलर पैनल लगवाएं। योजना और आवेदन के बारे में अधिक जानकारी व सहायता प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी बिजली कार्यालय यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस या सुविधा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा इंफोटेनमेंट का सफर जो है यूं ही जारी रहेगा। इससे पहले सुनिए ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से और जिसे आवाज दी है सनम पुरी और नीति मोहन ने।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गिववाणी में। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो बिना दरवाजा खटखटाए हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए हमारी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ साइबर फ्रॉड की। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल दुनिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। पढ़ाई हो, नौकरी की तलाश हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर सोशल मीडिया, हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। लेकिन जहां सुविधाएं हैं, वहीं कुछ खतरे भी हमें देखने को मिलते हैं। साइबर अपराधी हमारी छोटी सी गलती का फायदा उठाकर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पैसे तक चुरा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड वह अपराध है दोस्तों, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन या डिजिटल माध्यमों के उपयोग करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। फेक कॉल, नकली वेबसाइट, फिशिंग ईमेल, ओटीपी मांगना, फेक लॉटरी, ये सब साइबर फ्रॉड के उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों, हमारे इन्फॉर्मेशन का ये सफर जो है यूं ही जारी रहने वाला है। इससे पहले सुन लीजिए ये जरूरी संदेश।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
3: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
3: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
5: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
4: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
5: व्हाट्सएप 7895372936।
4: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
0: इस जरूरी संदेश से पहले दोस्तों, मैं बात कर रही थी साइबर फ्रॉड की। अब सवाल ये है कि दोस्तों, साइबर फ्रॉड से हम बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात का जिसका आपका ध्यान रखना होगा, अपना ओटीपी, बैंक डिटेल्स, एटीएम पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। याद रखिए, बैंक या कोई भी सरकारी संस्था कभी फोन करके ऐसी जानकारी नहीं मांगती। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। कई बार हमें मैसेज या व्हाट्सएप पर अट्रैक्टिव ऑफर्स या प्राइज जीतने का लालच आ जाता है। ऐसे लिंक आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। दोस्तों, अपने जो पासवर्ड हैं उन्हें स्ट्रांगली क्रिएट करें। अपने नाम और जन्मतिथि या मोबाइल नंबर को पासवर्ड ना बनाएं। लेटर्स, नंबर और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको पासवर्ड भी चेंज करना चाहिए। दोस्तों, यदि कभी आपको लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या आप उसमें फंस गए हैं, तो घबराइए नहीं। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही साइबर अपराध पोर्टल पर भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से भी बचा सकती है। तो दोस्तों, सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से और जिसे आवाज दी है चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर ने।

सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर महिला की सेहत से जुड़ा है, लेकिन इसके बारे में बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर की। भारत में महिलाओं में होने वाली यह दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है, लेकिन आज की सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव पूरी तरह संभव है। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ दो कदम उठाकर इस गंभीर बीमारी को खुद से दूर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर है क्या? यह कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होता है। इसका मुख्य कारण है HPV नाम का एक बहुत ही कॉमन वायरस। यह वायरस शरीर में सालों तक बिना किसी लक्षण के रह सकता है और धीरे धीरे कैंसर का रूप ये ले लेता है। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर से बचने के दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं दोस्तों। सबसे पहले है वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीनेशन। यह वैक्सीन लड़कियों को इस वायरस से बचाती है जो बाद में चलकर कैंसर का कारण बन सकती है। इसके लिए जो बेस्ट एज है दोस्तों, वो है 9 से 14 साल की उम्र के बीच की लड़कियों के लिए यह सबसे ज़्यादा सरदार है, क्योंकि इस समय बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा होता है और मजबूत भी होता है। इसे 15 से 26 साल और डॉक्टर की सलाह पर 45 साल तक की महिलाएं भी लगवा सकती हैं। दूसरा है दोस्तों रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट, समय पर जांच। कैंसर होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। नियमित जांच से कैंसर होने से पहले की स्टेज को पकड़ा जा सकता है और इसका इलाज करके कैंसर को रोका भी जा सकता है। और दोस्तों, इसमें शामिल है पैप्समेयर टेस्ट एंड HPV DNA टेस्ट। तो दोस्तों, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जारी रहने वाली है। तो उससे पहले सुनिए ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, जिसे आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो वार्निंग साइंस हैं वो है क्या? शुरुआती दिनों में इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन बीमारी बढ़ने पर ये संकेत दिख सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स या मेनोपॉज के बाद भी अचानक ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन रहना। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। अगर घर में 9 से 14 साल की बेटियां हैं तो उन्हें HPV वैक्सीन आप जरूर लगवाइए, और हर महिला को 30 की उम्र के बाद नियमित रूप से पैप स्मेयर टेस्ट करवाना भी चाहिए। याद रखिए, सही समय पर ली गई सावधानी जिंदगी बचा सकती है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दे, क्योंकि आपसे ही आपका परिवार है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा युववाणी जो कार्यक्रम है वो यहीं पर संपन्न होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए खत द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल, और पिन कोड है 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है uddn@gmail.com, और साथ ही आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी आकांक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे ग्राम जगत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
3: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेटरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
2: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
3: व्हाट्सएप 7895372936।
2: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
4: श्रोताओं, रविवार है वीर पहले आपन सुनो दीवान सिंह कनवाल और रमेश जोशी को गायो यो भलो भल कुमावनी गीत, और आशा करनो कि यह गीत आपके जरूर भल लागुनल। तो बोला तो मन के कैसे लगा यह गीत?
5: मैं तो भल लगी और गीत भी बहुत सुंदर छो। आजकल काफल भी खूब पक्या नी तो आजकल तो काफल हम तो ये करेगें काफल भी ककड़े खान दंगे तो सोशल मीडिया पर फोटो दिखाना वाला भी और बड़ो मन जुच उहणो काफलों का प्रति कि हम भी गांव जाओ। अब तो मुसीबत गर्मियों का छुट्टी भी पड़ गई, अब तो जाने पर भाई गांव
4: होई हम उन कोशिश करना चाहिए ना बुला कि आज भो जब नानते ने छुट्टी पड़ू तो हम उन जरूर अपू गांव जाना। जैसे कि होने हम क्या घूमने लीजिए दुई महीने पहली बट्टी हम अपू कार्यक्रम बने लेनु कि हम उन यहाँ जान छू टिकट बुक हजानी ने तो हम उन कोशिश करना चाहिए कि कब है अपू घर ले जरूर जाओ कि लेके जब हम आज हम अपू घर जोड़ने अपू नानते नान के लीजिए उन तो हमारे संस्कृति बट्टी जुड़ल ने और संस्कार सिकल हमारे बोली भाषा और तीज त्यार खान पान सब सिकल ने। तो श्रोताओं ने यह अनुरोध करनू कि वो यो बार छुट्टियों में अपू ले जाओ और अपू नानतीनन के लिए जरूर घर ले जाओ ने, तब है वो काफल पुलम खुमानी इनर स्वाद ले चल सकल ने कि लेकिन यहाँ दूर बटी तो हम केवल के करनू फोटो में ही देख सकनू ने। हो तो भूला अब देखो दे कह के चिट्ठी अरे
5: दीदी चिट्ठी पत्रों को झोला तो जर जर के घर होना चाहिए। देखता पहली चिट्ठी क्या कही चे तो पहली चिट्ठी आई ची विजय कार्की जी की, नियमित श्रोता छो हमारा और सीनियर सिटीजन डिफेंस कॉलोनी देहरादून बटिन बुना छो कि संगीता ढोंडियाल का गयु कोई भी गीत सुने दे अबल तो लियाओ आपको पसंद को संगीता ढोंडियाल को गयु गीत।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जिंदगी अनमोल है, दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना

0: रखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: सुन दो अभी आपन सुनी रेबार, और रेबार से पहले आपन सुनी संगीता ढुंडाल को गई गीत, और जय का अनुरोध करता छा विजय कार्की जी डिफेंस कॉलोनी देहरादून बटन
3: कोई भूला, और आशा कन्नु के गीत इनके भल्ला गुनल, और इन अलावा जो हमारे और दोहर श्रोता सुनने ने उनके लिए भल्ला गुनल ने
2: जी।
3: हाँ, और भूला एक चिट्ठी आई, अरे यो अरे विजय पार्क देहरादून बटी मनोरमा रावत जी, तो भूला यले हमर ने नियमित श्रोता छन, यले हम उनके हर बार चिट्ठी लिखनी, और जब ये चिट्ठी लिखनी ने भूला तो हमके बहुत भल्ले लगुने
2: जी
3: होई, तो यह कुनी की ग्राम जगत पुर कुटुम्बरी के रुमगदा की सेवा सोली,
2: तो यूं तभी रुमगदा की सेवा सोवे हमारे तरफा बेटिन
3: होई
2: जी दीदी।
3: और यह कुनी की दगड़ियो नरिन सिंह नेगी को गायो घरारा एगे रे बरखा झुकी गे सुने दिया, अगर ग्राम जगत गीतोक फंची मा यो गीत नहीं हो तो नेगी जी को चली बे मोटर चली सुना दिया
2: जी।
3: और यह कुनी की सिमनिया और जुगराज रया, तो मनोरमा जी हमारे पास तो यह दुए गीत छी, पर हम आपके पहली वाल गीत के सुने दिनों, तो मनोरमा जी और सब श्रोता सुनो नरेंद्र सिंह को गाई यो भलो भल गीत।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: श्रोता रेबार है भी पहले आपन सुनो नरेंद्र सिंह नेगी को गायो भलू भल गढ़वाली गीत, और आशा करनो कि मनोरमा रावत जी के यह गीत भल लगुनल, और उनर अलावा जो हमारे श्रोता सुनने ना उनके लिए यह गीत बहुत भल लगुनल। और मुला बे और पोरू जो दो आने हुई बात हो सबन के भल लगुनल हुई देर बाद ना।
3: बिल्कुल दीदी, और देखा दो दिन क्या घर हर बर्खा आएगी
2: और
3: दगड़ हमारे ठंड भी पड़ेगी तो खूब आजकल ठंड होगी आज
2: हो। पर भुला जो यो होने ठंड गरम वाले जो बखत हूँ यो टाइम में हमन का अब उस स्वास्थ्य ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ू ने तो ये लीजिए कब यो टाइम में जतु हो सको कोशिश करो कि अपू स्वास्थ्य ध्यान दरो ने।
3: जी दीदी
2: हो बोला और कोई चिट्ठी है?
3: एक और चिट्ठी है दीदी, विवेक सिंह ग्राम संकरोड़ी पोस्ट ऑफिस बरसोड़ी बचन सिंह रुद्रप्रयाग बटिन बोना छने की ग्राम जगत की कुटुम्बदारी खुणी बैखुनी भगत की बल सेवा सौंधी और आपते भी सेवा सौंधी, और अनुरोध गीतों को क्रम म बल मेरे गीत की बारी भी आलित जितेंद्र पवार को गयो डाकिया दीदा गीत सुना दिया तो जरूर आप भी सुना और हमारा और सुनदार भी सुना ये डाकिया दीदा गीत जितेंद्र पवार को गायो
2: जी।

0: सुन दे रो, अभी अपन सुने जितेंद्र पंवार को गायू गीत, और गीत का अनुरोध करता छा विवेक सिंह ग्राम संगरूरी रुद्रप्रयाग बेटिन। तो सुन दे रो, आप भी हमते चिट्ठी भेजा और हमारो जो चिट्ठी को पता चे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर जुगाल करना छा आपकी चिट्ठी का, आपका अनुरोध गीतों को। जी दीदी
1: हे भूला, एक चिट्ठी आई अरे यह अरे राज राजश्री विहार लोअर नथनपुर बटी
0: जी।
1: और यह लिखण वाल छी प्रदीप चौधरी, रुक्मणी चौधरी, पीयूष चौधरी और यह कुनी की कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण वालन के पहलाग नमस्कार और कुनी की कार्यक्रम बहुत भल चलनो वल और यह कुनी की हमन के ज्योति उप्रीति को गायो कोले गीत सुना दियो बल हमन के उनर जतुले गीत छी सब भल लगनी बल कोले सुना दियो
0: जी। तो लियावा सुना अपना पसंद को यह गीत।

0: श्रोताओं ले अपन सुनो ज्योति उप्रेती को गायो भलो भल यो गीत और आशा करनो कि हमारे लिखवारों के हैं और श्रोताओं के हैं या भल लग हुनल ने
1: जी दीदी। और एक बार और पता बता दिया
0: हुई
1: तो हमारे पते चे चिट्ठी gramjagat@gmail.com और आप झटपटा करा और चिट्ठी भेजा अपना अनुरोध गीतों को। आज आपका ही अनुरोध गीतों को कार्यक्रम च हम आपका दगड़े ठीक 7 बजे तक छन और अभी भगत हुएगी उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को। तो जिटगड़ी माँ आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र ग्यारोला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित

0: रखने का आग्रह किया। रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है और चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी कल कृषि विभाग द्वारा आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम ढाकी सहसपुर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों में जन जागरण के लिए 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान केसीसी निर्माण, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, कृषि यंत्रीकरण एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देश पर विकासखंड लमगड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज मेरगांव में बहुउद्देशीय एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों तथा कानूनों की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। शिविर के माध्यम से कुल 629 लोगों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित किया गया।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। अब श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि आज सुबह केदारनाथ घाटी और पैदल मार्ग पर तेज बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था। जैसे ही बारिश थमी और मौसम खुला, प्रशासन व पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पड़ावों पर रोके गए यात्रियों का आवागमन दोबारा शुरू करवाया। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को मौसम देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
3: 31 मई को प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस अनूठे आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर काबीना मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना है। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन 31 मई से 2 जून तक किया जाएगा। उत्तरकाशी में मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बावजूद चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अब तक दोनों धामों में 9,05,498 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन के चलते बीच बीच में बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। मौसम में बदलाव के कारण गंगोत्री धाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, फिर भी प्रतिदिन 10,000 से 12,000 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
4: मैं मेहरानी से आया हूं, जिला ललितपुर प्रदेश से आया हूं, और यहां पे आके हमें काफी अच्छा लगा और काफी बढ़िया तरीके से, मतलब बारिश और ठंड होने के बाद भी हमने गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाई और मतलब काफी बढ़िया व्यवस्था के बाद हमने यहाँ पे दर्शन भी किए और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो काफी बढ़िया व्यवस्था।
0: गंगा सभा समिति के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने बताया कि बरसात के मौसम में भी आस्था के बीच कोई कमी नहीं आई। गंगा सभा समिति ने यात्रियों के लिए खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की है।
5: बारिश हो रही और यात्री का जो सैलाब है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। गंगा सभा के द्वारा और मंदिर समिति द्वारा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो आग की व्यवस्था जो है गंगा सभा और मंदिर समिति द्वारा जो है निरंतर जो है किसी प्रकार की जो है यहाँ पर यात्रियों की।
0: शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों विषय पर 2 दिन तक पौड़ी मुख्यालय में चले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया है। यह ऑनलाइन सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार एवं हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा आयोजित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल के अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोगों में एआई के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के विषय में जागरूकता करना है। इसमें विश्व भर से 406 शोधार्थियों ने अपने अपने शोध भी भेजे और प्रस्तुत किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। और चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
7: अच्छा।
6: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
7: वो क्या है मम्मी जी?
6: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
7: आम भी ना मम्मी जी।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
9: उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों बाद एक बार फिर स्वागत छो आपक अपबोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा, और मीछु कुसुम पिलखवाल
10: और दगड़मा मीछो दीपक नेगी
9: होई। और भूला आज की ना, जैसे 31 मई छो, तो यह दुनिया भर में हर साल ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस रूप में मनाई जाने
10: जी।
9: तो यके मनाने का उद्देश्य की छु पता छो? यह उद्देश्य यह छु की लोगन के तम्बाकू बटी ने होने वाले नुकसान बारे में बताई जाओ, कभी ने
10: जागरूक करे जो
9: होई
10: जी।
9: तो भूला के छुने की या तंबाकू जो छु एक जहर है तो छुने?
10: बिल्कुल दीदी, और इसे जो चन जो तंबाकू का सेवन कर दन वो तो ग्रसित होंदन छन, लेकिन उनका परिवार जन उनका घर मा जो भी ये धुआं का गिरफ्त मान दो वो सब यहाँ का नुकसान हो तभी जन पड़
9: हो। लेकिन की होने भूला या माठ मठ कबे जो हमार भीतर बटी जो हमन के होने कमजोर बने दिनो हमारे ने
10: जी
9: हो। तो जैसे कि भूला बीड़ी छू, सिगरेट छू, गुटका, खैनी, हुक्का या दोहल जो ले तंबाकू उत्पाद छे ने, इल के हो कि हमारे फेफड़े, हृदय और मुखक जो हमार गंभीर बीमारी होने वो और ले जा। और भूला आज बहुत सब है भी चिंता विषय तो यह छूने कि जो हमार नानतिन और सयान सब ये गिरफ्त में आएगी ने।
10: जी बिल्कुल दीदी, और देखा पहले पहली शौक का वजह से और बाद बाद में यह शौक जो एक लत पड़ जाती और लत जब लगी दी तो एक जो भविष्य में बहुत ही नुकसान दे हो सको दो, और उनते तो नुकसान हो फिर एक कई बीमारियां छन, गंभीर बीमारियां, कैंसर जन अपन बोली च, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां छन, तो ये तो खुद भी नुकसान, परिवार को भी नुकसान, पैसों को भी नुकसान, ध्यान ना दीदी। तो आज को दिन ही यो एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाए, और जो भी एक गिरफ्त में हमारा सुनदार छन या जो भी लोग छन वो आज ही संकल्प लेवा कि हम जो छन कि ये तंबाकू ते छोड़ सको
9: होई भूला। और अगर हम चाहू ने कि हम एक भल जीवन जीव ने, तो ये एक लीजिए हमन के कारण पड़ा या तंबाकू बटी दूरी बनाना पड़े ने जो ले एक सेवन करनी ने।
10: जी बिल्कुल
9: होई। तो भूला इतु मैं और कौन चाहू कि तंबाकू बटी दूरी छु जरूरी, तब है रोल जिंदगी पूरी। और भूला जीवन अनमोल छु, यके धूमे झन उड़ाया, तंबाकू छोड़िया, स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपनाया।
10: बिल्कुल दीदी, बहुत बड़े बात बोला अपन। तो ये तो होगी आज को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक जागरूकता। और अब आज का जो अनुरोध गीतों को जो हमारे कार्यक्रम च वे माँ देखता कि आज झोला थोड़ा फिर भारी होगी, और एक और चिट्ठी है, और चिट्ठी का लिखवार छन हरीश रावत ग्राम स्योली कंडारसियो पट्टी पौड़ी गढ़वाल बटन बुना छने की प्रथम वर्तमान को सरली मेरे जिया लगेगी गीत सुने दवा तारीस जी। तो लियावा सुना आयो आपको पसंद को गीत, और दगड़ा माँ हमारा सुनदर अभी सुन ला एक प्यारो सी गीत
9: होई।

0: श्रोता ले आपन सुनो प्रीतम भरतवान को गायो भलो भल गढ़वाली गीत और यो गीतक लिखवार छी हरीश रावत जी पौड़ी गढ़वाल बटी। तो इनन के गीत भल लगुनल उलनर अलावा बुला जो हमारे दोहर श्रोता ले सुननी ने गीत के तो उनन के लिए जरूर भल लगुनल ने
1: जी बिल्कुल दीदी। और गानो भी कितना प्यारो नी। तो सुन दो आप भगत हुएगी गढ़वाली माँ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को। तो लियावा सुना गढ़वाली माँ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं अंजलि भट्ट।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, सरकार देश का धरोहर स्थलों का संरक्षण का खातिर हर संभव प्रयास करनी छी। आकाशवाणी बटिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगों से गर्मी का मौसम में सुरक्षित रहने को आग्रह केरी। रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होंदा ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगी अस्थायी रोक हटाई। और चमोली जिला की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ वेगी। आयोजन में देश का 28 राज्यों बटेन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छन। अब समाचार विस्तार बटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों का संरक्षण का खातिर प्रयासरत छी। आकाशवाणी बटेन मन की बात कार्यक्रम में उन बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी का पांडु वंश का महर्षि बालार्जुन बटेन जुड़े दुर्लभ तांबे की पट्टियां मिलें।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने बोली कि नीदरलैंड सरकारन हाल ही में चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत तय लौटाई छी, जैसे दुनिया भर का तमिल समुदाय में विशेष उत्साह छी। श्री मोदी ने बोली कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दगड़ी उनका संबंध तय दर्शांदी छी।
1: ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी देशवासियों बटिन भीषण गर्मी का मौजूदा मौसम का दौरान अत्यधिक सावधानी बरतन और सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील केरी।
1: देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने बोली कि भारतीय आमन वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई छी और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का खातिर बहुत महत्वपूर्ण छी। केदारनाथ धाम यात्रन ये साल नयो इतिहास रेची। 22 अप्रैल बटिन कपाट खुलना बाद 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुन बाबा केदार का दर्शन करीन। आधिकारिक आंकड़ों का अनुसार अब तक 10,497 श्रद्धालुन केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना केरी। देश विदेश बटिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाला श्रद्धालुओं का कारण ये वर्ष यात्रन नयो रिकॉर्ड स्थापित केरी। यह उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था थे भी दर्शाती छी। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरन बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या तय देखता हुआ सुरक्षा और सुगम दर्शन का व्यापक प्रबंध किए गए। पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रा मार्ग, केदारनाथ धाम परिसर में व्यवस्थाओं तय लगातार सुदृढ़ किए जाणु छी।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होंदा ही प्रशासन और पुलिसन यात्रा पर लगी अस्थायी रोक तय हटाई छी।

अब श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह दगड़ी बाबा केदार का दर्शन का खातिर अग्नय बढ़ सकदा छिन। आज सुबेर केदारनाथ घाटी और पैदल मार्ग पर तेज बरखा और खराब मौसम का कारण यात्रियों की सुरक्षा तक देखदा हुआ प्रशासनन यात्रा ते अस्थायी रूप बटिन रोकी छे। जनी बरखा रुकी और मौसम खुली, प्रशासन व पुलिसन तुरंत सभी पड़ावों पर रोकी गये यात्रा को आवागमन दोबारा शुरू केरी। जिला प्रशासन की तरफ बटिन यात्रियों ते मौसम देखी कर ही यात्रा कन की सलाह दिनी। चमोली जिला की नीति घाटी मा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ वेगी। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी का सहयोग से आयोजित ये आयोजन में देश का 28 राज्यों बटिन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छिन। 3 दिवसीय ये आयोजन को उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों तय बढ़ावा दून, स्थानीय संस्कृति तय राष्ट्रीय पहचान दिलौन और युवाओं में फिटनेस का प्रति जागरूकता बनौची। ये अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में यू आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम तय सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने को सशक्त माध्यम बताए। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गॉर्डन बताए कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन 31 मई बटिन 2 जून तक किए जालो। अल्मोड़ा का जिला अधिकारी अंशुल सिंगन ब्याली जागेश्वर क्षेत्र को स्थलीय निरीक्षण केरी। ये दौरान उन पर्यटकों की असुविधाओं और व्यवस्थाओं तय और अधिक सुदृढ़ कन का दिशा निर्देश अधिकारियों तय दिनेन। जिला अधिकारी पुनवा नौला मा बिखरिया कूड़ा पर नाराजगी जाहिर केरी तथा कूड़ा को समुचित प्रबंध का खातिर संबंधितों तय दिशा निर्देश दिनेन। यख उन पार्किंग की आवश्यकता पर बल देंदा हुआ बताए संबंधितों ते बोली कि पार्किंगों का खातिर उपयुक्त भूमि की तलाश किए जाली। ये का बाद जिला अधिकारी अरतौला पार्किंग में यातायात व्यवस्था तथा साफ सफाई आदि की समीक्षा केरी। ये दौरान उन व्यवस्थाओं को निरीक्षण केरी तथा बोली कि जागेश्वर धाम में बढ़ती पर्यटकों की संख्या का दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्थाओं तय विस्तृत किए जान आवश्यक छी। ये का खातिर उन लोक निर्माण विभाग का अधिकारियों तय अरतौला पार्किंग तय मल्टी स्टोरी पार्किंग का रूप में विस्तारित कन का खातिर आगणन बनाकर प्रस्तुत कन का निर्देश दिन। उन यख कूड़ा प्रबंधन और शौचालयों की नियमित साफ सफाई कन का निर्देश दिन। चमोली जिला में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा यूं दिनों चरम पर ची। द्वी पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचड़ा छिन। विशेष रूप बटिन बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन करना छिन। यात्रा का बढ़ता दबाव का बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ बटिन मारवाड़ी का बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्य का चलदा यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बनी छी। सड़क का कुछ हिस्सों में ऊंचा नीचा स्तर और भारी वाहनों की आवाजाही का कारण बीच बीच में वाहनों का खराब होने की घटनाएं भी सामने आनी छी। ये स्थिति में चमोली पुलिसन प्रभावी गेट सिस्टम लागू केरी। चमोली जिला का पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बोली कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित कुछ तस्वीरों तय जाम की स्थिति बताकर प्रस्तुत किए जानु छी, जबकि वास्तव में वी गेट सिस्टम का तहत व्यवस्थित रूप से खड़ा वाहन छिन। उन बोली कि वर्तमान में मार्ग पर यात्रा नियंत्रित सुरक्षित और सुचारू रूप बटिन संचालित होनु छी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली सरकार देश का धरोहर स्थलों का संरक्षण का खातिर हर संभव प्रयास करनी छी। आकाशवाणी बटिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी का मौसम में सुरक्षित रहने को आग्रह केरी। रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होंदा ही प्रशासन और पुलिसन यात्रा पर लगी अस्थायी रोक हटाई। अर चमोली जिला की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ वेगी। आयोजन में देश का 28 राज्यों बटिन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छिन। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कृषि जगत।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, मेरे यानी चंदा मलासी के साथ। कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो किसान समय को पहचानता है वही खेत में सोना उगाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो खेती की सफलता की असली चाबी है, कृषि में समय का महत्व। खेती केवल मेहनत का काम नहीं है बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला भी है। अगर बुआई सही समय पर हो, सिंचाई सही समय पर हो, खाद समय पर मिले और कटाई भी समय पर हो तो खेत भी मुस्कुराकर समय की कीमत चुकाता है और किसान का घर खुशियों से भर देता है। दोस्तों, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का जीवन पूरी तरह मौसम और समय पर आधारित होता है। खेती में समय का बहुत महत्व है क्योंकि फसल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि खेती के विभिन्न कार्य सही समय पर किए जाएं। सबसे पहले बुआई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर फसल एक निश्चित मौसम और उपयुक्त समय होता है। यदि बीज समय पर बोएंगे तो ही उनका अंकुरण अच्छा होता है, पौधे स्वस्थ विकसित होते हैं। देर से बुआई करने पर फसल की वृद्धि भी प्रभावित होती है। सही समय पर सिंचाई और खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी कृषि में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि पौधे की सही पोषण सही समय पर मिले, फसल मजबूत और रोगों से सुरक्षित रहती है। इसके अलावा कीट और रोगों का नियंत्रण भी समय से कर लेना चाहिए। यदि देर की तो पूरी फसल खराब हो सकती है। यदि फसल समय से न काटी जाए तो बारिश, आंधी या फिर कई अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल खराब भी हो सकती है। और आजकल तो कई सारे फोन ऐप भी उपलब्ध हैं जो लगातार मौसम की जानकारी पल पल में देती रहती हैं। नई तकनीक और वैज्ञानिक खेती के माध्यम से किसान समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कृषि में हो या जीवन में, सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही समय पर सही कार्य करने से भी मिलती है। इसीलिए सभी किसान भाइयों को समय का महत्व समझते हुए खेती के सभी कार्य समय पर करने चाहिए, तभी कृषि लाभदायक और समृद्ध बन सकती है। तो इसी के साथ अब समय हुआ है मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत।

0: दोस्तों, बागवानी न केवल किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, बल्कि पोषण, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागवानी के महत्व, आधुनिक तकनीकों और उन्नत बागवानी से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सफल कृषक ओमवीर सिंह, और उनसे बातचीत कर रहे हैं मेरे सहयोगी विकास चमोली।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मोहम्मदपुर बजरुग लक्सर हरिद्वार से सफल कृषक ओमवीर सिंह। और ओमवीर सिंह से आज की जो कृषि है इस पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे ओमवीर जी कृषि और बागवानी कर रहे हैं। तो ओमवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओमवीर जी, अगर हम खेती किसानी की बात करें तो जैसे कि अब आने वाला समय हमारा खरीफ का है, हरिद्वार की बात बताएं थोड़ा कि कैसे लक्सर हरिद्वार में किन चीजों की आपने इन दिनों खेती की हुई है। जैसे इस समय गन्ना हरिद्वार में हम देख रहे हैं कि खड़ा है,
2: फिलहाल जो है गन्ने की भी खेती है और जैसे मतलब खरीफ के फसल आने वाली है तो इसमें जो है हमारा धान की तैयारी चल रही है। अब जो है धान की रुपाई होनी शुरू हो गई है और उसके बाद में जो है फिर लगाई शुरू हो जाएगी।
1: जी, गन्ने की बात आपने कही, गन्ने के बारे में थोड़ा बताएं कि गन्ना किस स्थिति में अभी खड़ा है और इस समय गन्ने में क्या क्या काम चल रहा है।
2: गन्ने में फिलहाल नुलाई गुड़ाई खाद और सबसे पहला मुख्य कारण तो पानी का हो रहा है, पानी की सिंचाई, क्योंकि आपका जो है खुशकी अच्छी निकल रही है इसलिए जो है गन्ने में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है।
1: जी, तो ऐसे में फसलों में किस तरह की समस्याएं और देखी जा रही है?
2: ये अब तो इसमें जो है जब खुश्की निकलेगी और गर्मी होगी और मतलब जो है इसमें कीटनाशक भी तैयार हो जाएंगे, जैसे हमारे उसको बोलते हैं कि कणसवा आ गया, भूरी भूरी कीड़ी आ गई, ये खुश्की जब लगती है तो ये सारी चीजें हो जाती हैं।
1: जी, अच्छा ओमवीर जी, अब आने वाले समय की बात करें तो खरीफ में किस तरह से तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया धान भी आप लगाते हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है, खेत तैयार करना है, बीज अच्छा हो, ये सब चीजें एक किसान को पहले ही सोचनी होती है।
2: जी हाँ, जैसे ही हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम बीज कहाँ से लें और कौन सी प्रजाति लें। इसके लिए हमें जो है सरकारी जो मतलब ब्लॉक है या मतलब कृषि विज्ञान केंद्र है उनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है उनसे आप अपनी सलाह करें कि कौन सी प्रजाति हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है, उसी बीज का चयन करें।
1: जी,
2: और फिर हालांकि प्राइवेट दुकान की वजह से हमें बीज महंगे पड़ते हैं और अच्छी प्रजाति नहीं मिल पाती, हमेशा सरकारी ही दुकान से बीज खरीद दें, उसमें क्या है हमें छूट भी मिलेगी और बीज भी अच्छा उपलब्ध होगा।
1: तो जैसे आप बीज की बात बता रहे हैं, आप कौन कौन सी प्रजातियां लगाते हैं, क्या बासमती की भी कुछ प्रजातियां आप लगाते हैं?
2: बासमती में एक 1637 है और 1718 है, ये प्रजातियां मैं ज्यादातर लगाता हूँ और अब के भी 1718 जरूर लगाऊंगा। एक पुरानी प्रजाति है बासमती त्रावड़ी, उसको भी थोड़ी सी लगाता हूँ
1: जी,
2: तो क्योंकि उसमें जो है उसमें पैदावार कम है।
1: तो जैसे आपने बताया जो दो चार प्रजातियां आपने बताई हैं, इनको लगाने का कुछ खास कारण क्या, अच्छा उत्पादन इनसे मिलता
2: है? सबसे मुख्य कारण तो एक तो ये बासमती की प्रजाति है, खाने में भी अच्छी है और रिकवरी भी इनकी अच्छी है और मार्केट रेट भी इनके बहुत बढ़िया है।
1: अच्छा, तो जैसे जब आप इसको बेचते हैं तो अच्छा खासे दाम मिल जाते हैं।
2: जी हाँ।
1: ओमवीर जी, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे खेत तैयार अब हमने करना है, किस तरह की तैयारी चल रही है, खेतों को किस तरह से बनाते हैं आप, क्योंकि अब तो आधुनिक तरीकों से हम खेत तैयार कर रहे हैं, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, इन सब चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: सबसे पहले हम यदि उसमें खरपतवार ज्यादा है तो सबसे पहले हम हैरो का उपयोग करेंगे, उसके बाद में फिर हम टिलर का उपयोग करेंगे।
1: अच्छा,
2: फिर हम उसको खुला छोड़ देंगे, फिर खुला छोड़ने के बाद में फिर हटके उसकी गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने के बाद में जितने उसमें मतलब कीड़े मकोड़े हैं वह सब ऊपर आ जाएंगे और जो खरपतवार है वे भी हमारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम हल्की जुताई करके और फिर उसके बाद में रोपाई करेंगे।
1: जी, जैसे कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि जब हमारे खेत खाली हो तो मृदा परीक्षण हमें कराना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप कब कब कराते हैं मृदा परीक्षण?
2: हम अब भी कराते हैं और इसमें अक्टूबर नवंबर में भी कराते हैं।
1: तो क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है आपके खेत
2: जी
1: का?
2: हाँ, साल में 2 बार बनवाते हैं। उससे जो है हमें ये पता चल जाता है हमारी भूमि को कौन से तत्वों की कमी है,
1: उसी हिसाब से आप
2: उसी
1: खाद और
2: हिसाब से।
1: उर्वरक डालते
2: जी
1: हैं।
2: जी
1: जी, तो इससे आपने देखा होगा कि उत्पादन में किस तरह से बढ़ोतरी होती है, और लागत की बात करें तो
2: लागत
1: कैसे लागत इसमें कम आती है?
2: लागत इसमें कम आ जाती है, क्योंकि हमें ये जानकारी होगी कि हमें कौन सा पदार्थ इसमें डालना है। यदि अब यही ले लो कि जैसे हमारे पेट में तो दर्द है और हमने सिर दर्द की गोली ले ली या पैर के दर्द की गोली ले ली, तो वही फसल का है। क्योंकि जमीन में भी जिस चीज की तत्वों की कमी होती है वही हमें डालने चाहिए।
1: जी, ओमवीर जी, अगर हम बागवानी की बात करें अब, तो जैसे खरीफ फसलों की तो आपने तैयारियों की बात कर ही ली है कि
2: जी
1: धान अब आपने आने वाले समय में लगाना है, इसके अलावा गन्ना आपके खेत में खड़ा है।
2: जी
1: ऐसे ही हम बागवानी की बात करें तो क्या जैसे आम और लीची की इन दिनों फसल तैयार हो रही है, कटहल है, तो क्या आपके भी कुछ ऐसे बाग हैं?
2: जी हाँ, मेरे पास जो है कटहल के तो पेड़ छोटे हैं, उन पे तो अभी नहीं आए हैं, और आम के पेड़ हैं, चीकू के भी पेड़ हैं, आंवले के भी हैं। दरअसल जो है अब के आम के सीजन में आम को बहुत ज्यादा नुकसान है। जितने भी मेरे कृषक भाई हैं उनका सभी का नुकसान है।
1: अच्छा।
2: और अब के जो है जैसा ये तूफान आया पीछे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत से किसानों के पेड़ भी जड़ से उखड़ कर गिर गए।
1: ओह, अच्छा।
2: यानी कि खुद किसान का पेड़ उसमें उठाने की दिक्कत होती है। ये मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि कोई आपदा के कारण कोई पेड़ गिर जाता है तो तुरंत ही सरकार की तरफ से उन्हें अनुमति दी जाए कि भाई इनको उठा लो। उससे दो नुकसान है, पेड़ तो हमारा गिर ही गया,
1: जी।
2: नुकसान हो गया, जो उसके नीचे फसल है वह दब गई, वह मर गई। आगे जो है यदि हम उस पेड़ को उठाते हैं उसकी जगह पर दूसरा पेड़ तैयार लगा दें।
1: अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि अब की बार तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, आपके जो फल हैं वो भी गिरे हैं,
2: जी
1: तो जो फल गिरे हैं क्या आप उनका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं?
2: नहीं, अभी तो ऐसी व्यवस्था में नहीं थे, वे छोटे थे। किसी
1: अच्छा।
2: किसी पेड़ पे थे कि मतलब 10-15 दिन उसे अपनी चटनी बना सकते हैं, और या मतलब थोड़ा बहुत अचार डाल के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: अच्छा
2: लेकिन रुकने की व्यवस्था में नहीं थे।
1: अच्छा क्योंकि अभी उसमें गुठली नहीं पड़ी
2: हाँ
1: थी।
2: जी हाँ जी
1: जी, ओमवीर जी, इसके अलावा बात करें तो जैसे बाग जो फल गिर गए हैं वो तो गिर ही गए हैं, उनका तो
2: जी
1: क्या कर
2: जी
1: सकते हैं हम, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी कैसे फल रुके हैं हमारे, जो पेड़ आम के हैं या लीची के हैं?
2: अभी जो है बहुत ही कम फल रुके हैं।
1: अच्छा।
2: और अभी देखो प्रकृति का तो किसी को मालूम नहीं, ना ही सरकार को ना ही हमको। इसमें जो है यदि फल रुकता है तो ठीक है भाई, जाता है जब भी ठीक है।
1: जी, अच्छा, इसके अलावा जैसे सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, जैसे हम बीमा की बात करते हैं,
2: जी
1: तो क्या
2: हाँ
1: आपने भी ऐसे पेड़ों के बीमा कराए थे?
2: जी हाँ, मैं हर वर्ष कराता हूँ, गेहूं का भी कराता हूँ, बागवानी का भी कराता हूँ, और धान का भी कराता हूँ, सरसों का भी अब के हुआ है।
1: तो इससे जैसे इस समय आपके जो फल हैं वो टूटे हैं, जो वृक्ष हैं वो गिरे हैं, तो इसकी भरपाई काफी हद तक हो जाती है?
2: हाँ, ज्यादातर जो है देखो पेड़ तो अब के ही टूटे हैं, उखड़े हैं, जड़ से उखड़ गए हैं, लेकिन अब तक जो है जो फलों का नुकसान होता था उसका जो इतना तो मिल नहीं पाता जितनी वो हुई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिलता है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं कि हमने बीमा करा दिया और हमें नहीं मिला, मिलता जरूर है।
1: जी,
2: मैं
1: तो
2: तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार जितना ध्यान दे रही है इतना किसान को भी ध्यान देना चाहिए, अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लेना चाहिए।
1: जी, ओमवीर जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने वृक्ष आपके आम के हैं, फलों के हैं?
2: हमारे पास आम के पेड़ हैं 45,
1: अच्छा।
2: और 10 पेड़ हैं सिंबल के, 5 पेड़ हैं कटहल के, 2 पेड़ हैं चीकू के, और जामुन के भी हैं। मतलब घना बगीचा है, मिक्सी बगीचा हो रहा है। आंवले के भी हैं, नींबू के भी हैं।
1: जी, तो जैसे तूफान की बात तो आपने कही, इसके अलावा और किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं जो बाग हैं? क्या आम में किसी और तरह की समस्या भी आ रही
2: जी
1: है?
2: हाँ, आम में जो है एक भुनगा टाइप का रोग आता है, एक छोटे छोटे से ऐसे होते हैं जैसे मच्छर, और ये अब जो है धब्बे लग जाते हैं उसे, चेपा भी बोल देते हैं हमारी भाषा में, कि उस पे जो है आम पे ऐसे चिपचिपाट से के धब्बे से लग जाते हैं, मुझे फल खाने लायक नहीं रहता, ना ही उसका मार्केट में रेट मिलता है, क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता।
1: तो जैसे आपने कहा कि हम कृषि वैज्ञानिकों के लगातार संपर्क में हैं, किस तरह से आप इनका उपचार करते हैं?
2: इसमें जो है ये देखो, अब तो इसका उपचार कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे फल आ चुके हैं, इससे पहले ही होता है, इससे पहले दवाई डलवाई जाती है, यदि वह डलवा देते हैं तो रुक जाता है, और नहीं तो फिर नहीं रुक पाता, क्योंकि उससे अब मतलब जैसे हम फल आ गया और जैसे मतलब हवा आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया और फल नीचे गिर गया टूट के, तो उसे उठाकर जो है हम या तो इस्तेमाल करेंगे या किसी को देंगे, तो उसमें क्या है, उसमें नुकसान है, क्योंकि वे केमिकल तो उस पर डल गया, जब केमिकल डल गया तो वे आदमी खाएगा उसको, तो इसलिए जो है फल आने के बाद में केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा जी, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि फल आने के बाद हमें रसायन नहीं डालने हैं, खेती किसानी की बात करें तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है जैविक कृषि और रासायनिक कृषि को लेकर?
2: देखो जैविक में जो है शुद्ध है सारी चीजें, लेकिन इसमें जो है थोड़ी उपज घट जाती है
1: जी,
2: और यदि हमें इसी माध्यम से जाना है तो इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें जो है इसमें धीरे धीरे रासायनिक पदार्थ कम करने पड़ते हैं और ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वह धीरे धीरे बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें जब जाके 5 से 6 साल के अंदर हमारी रिकवरी वही आ जाएगी
1: जी,
2: जो रासायनिक में थी।
1: तो यानी कि लंबे समय तक अगर हम जैविक को अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन घटा है उस समय के बाद वो हमारा बराबर हो जाएगा,
2: बराबर हो जाएगा और उसके मार्केट रेट भी अच्छे मिलते हैं।
1: इसके अलावा जैसे रोग और कीट आ जाते हैं तो उसका नियंत्रण भी क्या जैविक से किया जा सकता है?
2: जी हाँ, किया जाता है।
1: थोड़ा बताएं इसके बारे में कि आप कैसे उसका नियंत्रण करते हैं?
2: उसके सबसे पहला तो मैं सरकार की जो परियोजना चल रही है उसमें जो है नीम ऑयल देते हैं, इनसे भी देखो कीट जो है मरता तो है नहीं लेकिन कुछ रोकथाम हो जाती है, उसके माध्यम से फिर हम अपना भी खुद का तैयार कर सकते हैं। जैसे कीटनाशक में हम अपने जो औषधि पौधे हैं उनसे और गौमूत्र से तैयार कर सकते हैं
1: जी,
2: जैसे हमारा आड़ू हो गया, नीम के पत्ते हो गए, आखा हो गया, मतलब जितने भी कड़वे पदार्थ हैं हम उनका एक घोल बनाएंगे, जैसे जीवामृत बनाते हैं और उनको जो है 1 हफ्ते तक हम रख देंगे, उनको एक ही साइड से घुमाएंगे।
1: अच्छा,
2: उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे हमारे कीट पतंगे नहीं लगते, ये ऑर्गेनिक में
1: जी। तो अम्बीर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज कृषि और बागवानी के विषय में आपके साथ हुई, आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार,
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता बागवानी और कृषि विषय पर। ओमवीर सिंह जी एक जो एक प्रगतिशील सफल कृषक हैं, वो दे रहे थे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और उनसे बातचीत कर रहे थे मेरे सहयोगी विकास चमोली।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतों, आज हम पूरे विश्व में मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति

आजकल युवा वर्ग तेजी से तंबाकू की ओर आकर्षित हो रहा है। शुरुआत अक्सर सिर्फ एक बार से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लत बन जाती है। ये न केवल स्वास्थ्य खराब करती है, बल्कि पढ़ाई, करियर और पारिवारिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। और दोस्तों, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन तंबाकू पर खर्च करता है, वो साल भर में हजारों रुपये बर्बाद कर देता है। इससे परिवार में तनाव पड़ता है, बच्चों पर गलत प्रभाव डालता है और समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है, लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देना है। तंबाकू छोड़ने के लिए आज ही दृढ़ निश्चय करें, अपने परिवार का सहयोग लें और मैं परिवार वालों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि उसका साथ दें। वो मानसिक और इमोशनल रूप से काफी आपकी सहायता चाहता है। उसका साथ दें, उसे प्रेम से समझाएं और इस मुश्किल काम में उसके साथ खड़े रहें। डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत जरूरी है, साथ ही योग, व्यायाम, पॉजिटिव सोच के साथ साथ अच्छी संगत का होना भी बहुत जरूरी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन मेरी आप सभी से अनुरोध है कि नशे से बाहर आए, इन आदतों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प आज ही लें। इसी के साथ दोस्तों सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत।

दोस्तों, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य बताएं। अक्सर हमारे श्रोता हमसे बातें करना चाहते हैं और काफी कुछ हमसे साझा भी करना चाहते हैं, लेकिन पत्र कैसे लिखें, कहां पोस्ट करें, बस इन्हीं सोच में गुम हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी आपके पत्रों का इंतजार रहता है। आपके पत्र कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं, साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत उठाइए पेन और पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी चंदा मलासी को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। शाम के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार देशक धरोहर स्थलों संरक्षण लीजी हर संभव प्रयास कर रहे। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मैशो हेते।

0: एक मौसम में सुरक्षित रौनक अपील करी। रुद्रप्रयाग झील और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगाए अस्थायी रोक कै हटे है और चमोली जिलक नीति घाटी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ हैगो। आयोजनम देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी हिस्से लीरी। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कौ की सरकार देशक अमूल्य धरोहरों संरक्षण लिजी प्रयासरत छू। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम उन्होंने बता कि ज्ञान भारत अभियानक तहत छत्तीसगढ़क मल्हारम छठू सातु शताब्दी के पांडु वंशक महर्षि बाला अर्जुन हेबे जुड़ी दुर्लभ तांबक तीन पट्टिकाएं मिल रही।
1: भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री कौ की नीदरलैंड्स सरकारल हाल में चोलकालीन ताम्र पट्टिका भारत कैन लॉटरी जैल दुनी भरक तमिल समुदाय खास उत्साह छु। श्री मोदी कौ की यू पट्टिकाएं चोल साम्राज्यक समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों दगड़ उनर संबंधों के दर्शानी।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी देशवासियों हेते आजकलक बहुत उमावक यो मौसमक दौरान सावधानी बरतन और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहे।
1: समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी कौ की भारतीय आमल वैश्विक बाजार तक पहुंच बना रहे और आम हमेर कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी छी। केदारनाथ धाम यात्रा यो साल नई इतिहास रच है। 22 अप्रैल हते कपाट खुलने बाद बटी 30 मई तक सिर्फ 39 दिनों में 10 लाख हबे ज्यादा श्रद्धालुओं बाबा केदारक दर्शन करी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज तक 10,497 श्रद्धालुओं केदारनाथ धाम पुजबेर पूजा अर्चना करी है। देश विदेश बटी बहुत संख्या में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं कारण यो साल यात्रा नई रिकॉर्ड स्थापित करी। यो उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में करी गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं को गहरी आस्था के लिए दर्शी। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरल बता कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शनक व्यापक प्रबंध करी जा रही। पार्किंग यातायात प्रबंधन पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम परिश्रम व्यवस्थाओं के लगातार भल करी जा रो। प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमार सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। रुद्रप्रयाग झील और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगाए अस्थायी रोक कै हटे है। अब श्रद्धालु पूर्व श्रद्धा और उत्साह दगड़ बाबा केदारनाथ तक दर्शनक लीजी आघिल जा सकनी। बता दियूं कि आज रत्ती केदारनाथ घाटी और पैदल मार्ग पर बहुत दियो और खराब मौसम कारण यात्रियों की सुरक्षा कै देखते हुए प्रशासनल यात्रा कै अस्थायी रूपल रोके छी। जस दियो रुको और मौसम साफ हो प्रशासनल और पुलिस उससे मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पड़ावों पर रोकी गई यात्रियों का आवागमन दोबारा शुरू कर है। जिल प्रशासनक ओर बटी यात्रियों के मौसम देख भी रहे यात्रा करनक सलाह दी जा रहे।
2: इस मई को प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था ताकि जो तीर्थयात्री

0: पर हैं वहाँ थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमने हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
1: चमोली जिला नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ है गो। पर्यटन विभाग बटी भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोगल है यो आयोजन। देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी भाग ले रही। 3 दिनी यो आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावा देण, स्थानीय संस्कृति के राष्ट्रीय पछाण दिलाण और जवान नंतिनु में फिटनेस प्रति जागरूकता बढ़ान छू। यह मौक पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी कौ की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व यो आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिट इंडिया मुहिम के सीमांत क्षेत्रों तक पुजाणक सशक्त माध्यम बन गो। जिल पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ल बता कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन 31 मई बटी 2 जून तक करी जाल। अल्मड़क जिलाधिकारी अंशुल सिहल बेई जक्षर इलाका के स्थलीय निरीक्षण करो। यो एक दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के आए ज्यादा भल करने के निर्देश अधिकारियों के दी। जिलाधिकारी पनवा नौलाम इथाउथा पड़ी गद्दर के निबेर नाराजगी जताए और गद्दरक समुचित प्रबंधन लीजी संबंधितों के दिशा निर्देश दी। यहां उन्होंने पार्किंग की जरूरत पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों हेते कौ की पार्किंग लीजी उपयुक्त जमीनक तलाश करी जाओ। यह एक बाद जिलाधिकारी अड़ताला पार्किंग यातायात व्यवस्था और साफ सफाई की समीक्षा करी। यो दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करो और कौ की जाक्षर धाम बढ़ती पर्यटकों की संख्या के ध्यान में धरते हुए पार्किंग व्यवस्थाओं के विस्तृत करी जान जरूरी छू। एक लीजिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों हेते कौ की अड़ताला पार्किंग के मल्टी स्टोर पार्किंग रूप में विस्तारित करने के लिए आगणन बनाबेर प्रस्तुत करो। उन्होंने यहाँ गद्दर प्रबंधन और शौचालयों को रोज साफ सफाई करने का निर्देश ले दी। चमोली जिला बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा आजकल चरम पर छू। दुए पवित्र धामों में हर दिन बहुते संख्या में श्रद्धालु पूजेरी। विशेष रूपल बद्रीनाथ धाम हर दिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन करेरी। यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ बटी मारवाड़ी के बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्यो के चलते यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बनु रहो। सड़क कुछ हिस्सों में उच्च नीचे स्तर और भारी वाहनों की आवाजाही कारण बीच बीच में वाहनों खराब होना घटना लय सामने आ रही। इस स्थिति में चमोली पुलिस प्रभावी गेट सिस्टम लागू कर रहो। चमोली जिला पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारल कौ की सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ तस्वीरों के जामक स्थिति बतबेर प्रस्तुत करी जा रहो, जबकि वास्तव में उन गेट सिस्टम के तहत व्यवस्थित रूप करी गई वाहन छन। उन्होंने कौ की एल में मार्ग पर यातायात नियंत्रित सुरक्षित और सुचारू रूप संचालित हो रहो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सरकार देशक धरोहर स्थलों संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मैसू हेते रूड़िक मौसम में सुरक्षित रूणक अपील करी। रुद्रप्रयाग जिल और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिसल यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक के हटे है और चमोली जिलक नीति घाटी नीति एक्सट्रीम रनक अल्ट्रा रनक शुभारंभ है गो। आयोजन देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी हिस्से ले रही। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। शाम के 7:40 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है नकाब फिल्म से। आवाज है जावेद अली की।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है प्रिंस फिल्म से। आवाजें आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे काव्यांजलि, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सतीश बंसल से काव्य पाठ।
1: कुछ कविताएं लेकर मैं हाजिर हूं आपके बीच और एक संदेश के साथ आज के काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। जो शहीदों ने अपने लहू से लिखी फर्ज है वो इबारत संजो कर रखें। जो शहीदों ने अपने लहू से लिखी फर्ज है वो इबारत संजो कर रखें।

रखें। श्रोताओं, कविता की बहुत सारी विधाओं में से एक विधा है माहिया, जिसका जन्म बताते हैं कि पंजाब से शुरू हुआ बोलियों के रूप में, और फिर ये विधा ने आंचलिक भाषाओं के रूप में प्रचलित होकर अनेक तरह के काव्य को जन्म दिया। कुछ माहिया मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके सम्मुख।

और श्रोताओं, प्रेम ईश्वर के प्रति हो, प्रेम अपने कर्म के प्रति हो, प्रेम प्रेमी के प्रति हो, प्रेम में मनुष्य एकाकार हो जाना चाहता है। उसी एकाकार की अवस्था का एक माहिया देखिएगा।

मित्रों, प्रेम और भारतीय प्रेम के तो सच संपूर्ण चरित्र भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, उन्हीं के प्रेम चरित्र से एक मुक्तक लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिएगा कि त्याग तृष्णा निष्काम हो जाऊंगा,

कविता की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधा है गीत। आंचलिक भाषाओं से लेकर लोग गीतों के रूप में साहित्य को युग युगों से समृद्ध करते आए हैं। ऐसा ही एक प्रेम गीत आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिएगा। कि धड़कनों की रिदम जोड़ कर साथ हम,

और मित्रों, ये गीत का अंतिम मंत्र, अंतिम पंक्ति, कि मौजूबे फिक्रियों की उड़ाया करो, मौजूबे फिक्रियों की उड़ाया करो, गम मिले भी तो मुंह मत लगाया करो, मौजूबे

गीतों में, कविताओं में एक विधा है जिसको हम छंद कहते हैं। छंद तीव्र गति से पढ़े जाने वाली रचनाएं होती हैं। छंद क्योंकि अलग अलग मौसम के हिसाब से लिखे जाते हैं। कुछ छंद देखिएगा, प्रस्तुत करता हूं आपके सम्मुख। के धूप में नया निखार, मधु भरी है बयार, चहुं और फूलों की बहार है बसंत में।

0: गली खेत कुंज, प्रकृति का तेज पुंज, धरा का अलौकिक श्रृंगार है बसंत में। अधूरों पे झूठी रार नयनों में मनुहार, अधूरों पे झूठी रार नयनों में मनुहार, यौवनी पे आतिश खुमार है बसंत में। और बनने को प्रेम दास कलियों के आस पास, अलियों की देखिए कतार है बसंत में। बनने को प्रेम दास कलियों के आस पास, अलियों की देखिए कतार है बसंत में। और एक ये छंद भी देखिएगा कि कम सीनी कामनी ने यौवन की दामनी ने खुद को जो गौर से निहारा दर्पण में। कम सीनी कामनी ने यौवन की दामनी ने खुद को जो गौर से निहारा दर्पण में। जिससे हुई थी चार आंखें बस एक बार, वही बार बार आने लगा है सपन में। हर करके जतन छुई मुई हुआ तन, हर करके जतन छुई मुई हुआ तन, नया कुछ लगा पुरवाई की छुवन में। और धरा का श्रृंगार देख झूमती बहार देख, धरा का श्रृंगार देख झूमती बहार देख, हलचल होने लगी यौवना के मन में। धरा का श्रृंगार देख झूमती बहार देख, हलचल होने लगी यौवना के मन में। और एक ये छंद और देखिएगा के थोड़ी सी उमंग लिए, थोड़ी सी तरंग लिए, थोड़ा थोड़ा मन को उदास लिए भंवरे। थोड़ी सी उमंग लिए, थोड़ी सी तरंग लिए, थोड़ा थोड़ा मन को उदास लिए भंवरे। गुन गुन कर रहे बाग में विचर रहे, अधरों पे अनव्यूजी प्यास लिए भंवरे। प्रणय निवेदन का मन के आवेदन का, प्रणय निवेदन का मन के आवेदन का, पत्र निज हृदय के पास लिए भंवरे। प्रेम पंख खोल रहे बाग बाग डोल रहे, कलियों से मिलने की आस लिए भंवरे। प्रेम पंख खोल रहे बाग बाग डोल रहे, कलियों से मिलने की आस लिए भंवरे, कलियों से मिलने की आस लिए भंवरे।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि, जिसके अंतर्गत आपने सुना सतीश बंसल जी को। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान।

0: हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर शिव मंदिर के पास श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय में हम इस समय हैं नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता जी के साथ। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, अक्सर आयुर्वेद का विरोध इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखने में कई अड़चने आती हैं, ऐसा माना जाता है आम लोगों में। सच क्या है वो तो आप ही बताएंगे। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा पर आपका क्या दृष्टिकोण है?
1: दरअसल आयुर्वेद के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो मॉडर्न पैरामीटर्स में उसको

0: बैठाना कभी कभार एक अड़चन वाला काम है, लेकिन क्योंकि अपने आयुर्वेद को हमें पूरे जगत तक या पूरे संसार तक उसकी पोटेंशियल को शो करना है, इस वजह से अभी एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात चल रही है। हाल ही में WHO ने अहमदाबाद गुजरात में एक क्षेत्रीय इकाई खोली है जो सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन पे फोकस्ड है और वहाँ आयुर्वेद से रिलेटेड सारी ही रिसर्चेस हो रही हैं। हमने अपने चिकित्सालय में भी अपने जो क्राइटेरिया में जो जिन पेशेंट्स की रिकवरी हुई है उनको एक मॉडर्न क्राइटेरिया में डाल के उनके शोध पत्र जो हैं हमने पब्लिश कराए हैं। अब हाल ही का एक मैं एग्जांपल दूंगा, एक पुरुष रुग्ण था जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसको कुछ एक सालों से यूवेआइटिस की दिक्कत थी और सडन उसको विट्रस हेमरेज हुआ, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जो रोगी था वो एक महीना उसने अपना जो चिकित्सा रहती है नेत्र चिकित्सकों को दिखाया, सब जगह दिखाया, लेकिन उसको कहीं उससे आराम नहीं आ रहा था। उसने आयुर्वेद चिकित्सक ढूंढा, हमारे पास आया और चिकित्सा ली हमसे, और 3 महीने के पीरियड में उसकी आंखों की रोशनी पूरी आ गई। और यही केस क्योंकि हम डॉक्यूमेंट करने में सफल रहे, क्योंकि प्री एंड पोस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास थी, तो इस केस पेपर को हमने यूरोपियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड क्लिनिकल मेडिसिन में पब्लिश कराया है। ये एक बहुत ही अच्छा पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल है जिसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इस वजह से जो भी हम काम करते हैं अभी हमारा प्रयास ये है कि हम उसे एविडेंस बेस कर सकें ताकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में आयुर्वेद का लोहा माना जा सके।
1: निश्चित ही आपने एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की बात की और आप उसे अपने चिकित्सालय के माध्यम से धरातल पर भी उतार रहे हैं। थोड़ा हमें जानकारी दें कि आपके चिकित्सालय पर जब कोई मरीज आता है तो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो क्लिनिक्स पर दवाइयां दी जाती हैं क्या वो खुद से तैयार की जाती हैं या सेंट्रलाइज जगह पर मैन्युफैक्चर्ड होकर के, जैसे एलोपैथी में होता है फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां लोगों को रिकमेंड की जाती हैं डॉक्टर्स द्वारा, आयुर्वेद में क्या परंपरा अपनाई जाती है और इसका कारण क्या है ये भी थोड़ा समझाइएगा।
0: देखिए, आयुर्वेद में ऐसा निर्देश है कि जो चिकित्सक है उसको दवा का संग्रहण यानी कलेक्शन प्लस दवा का प्रोसेसिंग या उसका जो बनाना है वो अपने अंडर ही करना ज़रूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो आयुर्वेद की दवाएं उपलब्ध हैं वो अगर आप उसको आयुर्वेद के ग्रंथों से कंपेयर करें तो 5% से भी कम आयुर्वेद की दवाएं रेडीमेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। तो अगर आपको गंभीर रोगों के लिए रोगी की चिकित्सा करनी है तो दवाओं को खुद अपने चिकित्सालय में मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या कस्टमाइज करना पड़ता है। मैं इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि एक मदन फल एक औषधि रहती है जिसका संग्रह काल आयुर्वेद में बताया है कि वो ग्रीष्म और वसंत के बीच में यानी मई जून के महीने में उस फल का संग्रह करके उससे दवा बनाई जाती है। तो अगर चिकित्सक खुद वो उस फल का संग्रह करता है तो उसको उसका क्वालिटी का एश्योरेंस रहता है और उस दवा का पूर्ण वीर या फिर पोटेंसी उस दवा में रहती है। इसके अलावा आयुर्वेद में हम लोग औषधि कलेक्शन के कुछ एक नॉर्म्स दिए गए हैं कि औषधि कलेक्शन या औषधि द्रव्य लेने से पहले हमें एक मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, हमें उपवास के साथ सफ़ेद वस्त्र पहन के औषधि लेनी चाहिए क्योंकि औषधि में भी जीव रहता है ये मान के हम जब औषधि लेते हैं तो उसमें उसकी पूरी पोटेंसी आती है। औषधि कलेक्शन के बाद अब औषधि निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन आयुर्वेद में आता है। इसका सादा सा एग्जाम्पल है जो आजकल स्वर्ण प्राशन बच्चों में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है। दरअसल स्वर्ण प्राशन की जो दवा बनाई जाती है वो पुष्य नक्षत्र में बनाई जाती है। तो पुष्य नक्षत्र में बना हुआ स्वर्ण प्राशन जो है वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही अगर बालक को पिलाया जाता है तो उसके गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सुप्रजा या इनफर्टिलिटी पे जो कुछ एक मेडिसिंस बनती हैं वो भी पुष्य नक्षत्र में बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। इसके अलावा हमारे चिकित्सालय में हम औषधि को सूक्ष्मीकरण के एक तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे आप आधुनिक विज्ञान में उसको नैनो पार्टिकल्स कह सकते हैं। मतलब हम औषधि को इस तरह से संस्कारित करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाए। और आयुर्वेद में जो रस औषधियाँ रहती हैं हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस रहते हैं रिसर्च के अनुसार वो सेकंड के 18वें हिस्से में शरीर में असर दिखाती है। तो इससे ये बात भी जो आजकल आरोप लगाए जाते हैं कि आयुर्वेद का इलाज धीमा है ये बात भी खंडित हो जाती है। तो वो चीज नैनो पार्टिकल्स प्लस सूक्ष्म औषधीकरण जो है वो हमारी चिकित्सालय की विशेषता है।
1: निश्चित ही। और

तो अगर आप श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय में कोई भी चिकित्सीय सेवाएं लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7895372936 पर नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, रात्रि के 8:20 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुमेश कुमार की आवाज में गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे सुमेश कुमार की आवाज में गजलें। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मिस्टर नटवरलाल फिल्म से ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad.

0: Based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे

0: पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
2: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार आदा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: छोड़ दो, देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सही है,

0: एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती देवी, तो लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
3: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पग। जटिल कर्म पथ पर।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।
1: हर

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया

0: और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु यर्रय्या एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु यर्रय्या is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम यरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु यर्रय्या एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्ले। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री यरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Adithal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapura Puyaraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Srajananda in Rag Kiravani, set to Misra Chaputal.

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ
1: मोहम्मद जुबैर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में शाजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआई

0: आर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister